0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
3: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
4: Excuse me, it's called being loyal.
3: It's called being predictable.
4: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
3: And what's so special at Neon Cactus?
4: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
3: Not bad.
4: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
3: Okay, this I didn't expect from you.
4: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
3: Mamu, देखो क्या हो गया।
5: ओ क्या हो गया?
3: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया। और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
5: ओए जर्मन का कमाल है।
3: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
5: ओए नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
6: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
7: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
8: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
7: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
9: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
10: लिया।
9: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
10: नहीं आया।
9: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
2: Visit www.sanadainc.com today.
11: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutter. Rich, bold, no compromises.
12: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai. New on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGPT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao. Flavor hum sambhal lenge. The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.

गाय 7 बज चुके हैं, मैं स्टूडियो में आ चुकी हूँ। आप कैसे हैं? आप सही है ना भाई? वो गाना जो था, इट्स सो मीनिंगफुल। जिंदगी में ना मुझे पाबंदियां नहीं पसंद, मुझे चाहिए कि भाई मैं उड़ूं। आई वॉन्ट टू फ्लाई अप हाई इन द स्काई लाइक अ बटरफ्लाई। वैसे बटरफ्लाई उतनी ऊपर उड़ती नहीं है, लेट्स इमेजिन ईगल्स, बट दैट डिडंट राइम विद द रेस्ट ऑफ द पोएम दैट आई वॉज मेकिंग, तो मैंने बटरफ्लाई बोल दिया बिकॉज दैट काइंड ऑफ राइम्स, राइट? एनी वेज गाइज, भाई पाबंदियाँ ऐसा है कि जब तक मेरा ओपिनियन है, जब तक पाबंदियाँ कोई और आप पे डालता है, तो देन इट फील्स लाइक कोई आपको खींच रहा है, समबडी इज होल्डिंग यू बैक। लेकिन अगर आपके पास कोई पाबंदियां नहीं है, एंड इफ यू आर जस्ट लाइक फ्लाइंग हाई, लाइक यू गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड यू नो यू डोंट नो योर फुल पोटेंशियल बेसिकली, जब तक आप अपनी पाबंदियां तोड़ के आगे फ्लाई नहीं करते। लेकिन उसके बाद पता क्या होता है, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमने सबने वो इकरिस की स्टोरी सुनी थी। इकरिस ने अपने लिए वो वैक्स वाले विंग्स बनाए, ठीक है, वैक्स वाले विंग्स बना के वो कूद गया, और फिर वो फ्लाई करता गया, फ्लाई करता गया, जाके जाके वो पहुंच गया सूरज के पास। सूरज के पास जाके उसकी विंग्स हो गई मेल्ट, क्योंकि वैक्स की थी तो सूरज पे तो मतलब इतनी तेज गर्मी। बट मेरा ओपिनियन ये है, मेरा ये मानना है, हियर मी आउट, ओके? चलो ठीक है, आई अग्री। अगर आप ज्यादा सूरज के पास जाओगे तो यू कैन मेल्ट योर विंग्स एंड देन यू कैन फॉल टू द ग्राउंड एंड डाई एंड देन टाटा बाय बाय, ठीक है? लेकिन जब तक आप फ्लाई नहीं करोगे उतनी दूर तक, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि सूरज है क्या चीज, है ना? इकरस वहां गया था, सूरज के पास गया था, आई मीन ही वेंट वे टू क्लोज, बट ठीक है, उसने ट्राई तो करी ना। वो गया, उसको पता चला सूरज इज लाइक अ बिग बॉल ऑफ फायर। फिर उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि अरे भाई ये तो बहुत है। उसको उसके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए था, इन माई ओपिनियन। मतलब आज के डेट में तो बैकअप ऑप्शन मिल ही जाएगा, आई एम श्योर उस जमाने में नहीं था, बट वॉट एवर। बट द पॉइंट इज, जब तक आपके ऊपर पाबंदियां हैं, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या रखा है, आगे क्या है। जब आप पाबंदियां तोड़ के आगे निकल जाते हो, वेन यू आर फ्लाइंग एंड फ्लाइंग एंड फ्लाइंग, एंड देन यू रियलाइज, अच्छा नहीं भाई ये ज्यादा हो गया, नाउ यू गॉट पुट सम पाबंदियां ऑन योर सेल्फ। दूसरों पे पाबंदियां मत डालो, अपने आप पे पाबंदियां डालो। वेन यू फील दैट ओके फाइन नाउ आई हैव रीच माई थ्रेश होल्ड, देन इट्स अ बैलेंस। दैट्स वॉट मेक्स द जेन लाइफ, जो बुद्धिज्म वाली फिलोसफी है ना, हैव द परफेक्ट बैलेंस, हैव द परफेक्ट जेन। आई फील लाइक दैट इज इनक्रेडिबल, ठीक है? एनी वेज गाइज, आपका ट्यूजडे कैसे चल रहा है? आई स्टार्टेड विद दिस रियली इनक्रेडिबल कॉन्वर्सेशन, है ना? तो उसी का थीम लेके हम चलेंगे। लेकिन उसके अलावा भी मैं आज आपको बहुत सारी इवेंट्स के बारे में बता रही हूँ दैट आर गोना हैपन ऑल ओवर DFW, ठीक है? इफ दिस इज समथिंग दैट स्ट्राइक्स योर फैंसी, फील फ्री टू गो फॉर इट, और इफ इट डजेंट देन फाइंड समथिंग एल्स टू डू ओवर द वीकेंड, बिकॉज वीकेंड इज अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। मुझे तो आई लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं कहा मैं पूरे वीक में 14 14 घंटे काम करती हूँ, वीकेंड पे जाके सिर्फ मुझे आई डोंट नो 10 8 घंटे काम करने पड़ते हैं, तो इट्स अ मच बेटर बार्गेन, है ना? तो उसी से एक गाना सुनते हैं एंड देन वी विल कम बैक एंड लिसन टू मोर सॉन्ग्स। भाई कॉकटेल 2 भी आने वाली है ना? तो आपने कॉकटेल 2 का ये गाना सुनिए।

And there is another really, really cool event happening, which I think a lot of my listeners would absolutely love. मुझे लगता है आप सबको ये वाला बहुत पसंद आएगा बिकॉज जब मैंने यहाँ पे रेडियो शो होस्ट करना शुरू किया था एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट आर एब्सोल्युटली करंट विच इज़ नॉट नेसेसरली बॉलीवुड, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला फ्रॉम ऑल माई लिसनर्स. सम ऑफ देम अग्रीड विद मी, सम ऑफ देम डिडंट अग्री विद मी, एंड दैट इज टोटली ओके बिकॉज यू आर ए पर्सन ऑफ योर ओन आइडेंटिटी एंड यू आर अलाउड टू हैव योर ओन ओपिनियंस, क्यों नहीं. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वेन दी ऑडियंस एंगेजेस विद मी सो मच बिकॉज दैट मीन्स यू गाइज आर लिसनिंग, यू गाइज आर एक्टिव लिसनर्स. ऐसे नहीं है बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, नहीं, यू गाइज आर एंगेजिंग विद मी. आई लव दैट, आई लव हैविंग दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस एंड इट्स सो अमेजिंग. तो अगर आपको वो वाली चीज़ें भी पसंद है, विच आई एम अज्यूमिंग यू डू, देन देर इज़ ए रियली कूल साउथ एशियन स्टोरी टेलिंग एंड क्रिएटिव वर्कशॉप दैट इज़ हैपनिंग ऑन 20th June. इट्स कॉल्ड DFW इन पर्सन. और कहाँ हो रहा है? इट्स हेल्ड एट द यूनियन एट सीडर स्प्रिंग्स रोड. अच्छा, वॉट इज़ दिस इवेंट ऑल अबाउट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स बेसिकली अबाउट South Asians from all over DFW or nearby areas, if you can reach here, that is, to connect, reflect and share and express themselves through creativity and community. So kya karenge? Hum banayenge collages, poster designing, crafts. They'll have debates and conversations and discussions. They'll explore stories and identities, immigrant ideas, jo hum sab ke hue hai, hai na? Cultures, different cultures from all over South Asia. Agar aapko South Asia nahi pata, South Asia basically does not simply include India. It includes India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. That entire region is called South Asia. And they will provide supplies also. To aapko kuch bhi leke nahi jana. Aapko paper bhi diya jayega. पोस्टर मेकिंग के पेंट भी दिए जाएंगे, सप्लाईज भी दिए जाएंगे. बट अगर आपको अपना सामान कुछ चाहिए, देन यू आर मोर देन वेलकम टू टेक, यू नो, अगर आपको कोलाज बनाना है जैसे, देन यू कैन टेक अ बंच ऑफ मैगजीन्स, उसके फोटोग्राफ्स वगैरह काट काट के आप यू कैन पेस्ट इट एंड यू नो व्हाटएवर, यू कैन टेक योर ओन थिंग्स एज वेल, बट सम ऑफ देम विल बी प्रोवाइडेड. वेयर इज इट हैपनिंग? इट्स हैपनिंग एट यूनियन कॉफी ऑन 20th June फ्रॉम 3 to 5 PM. सो आई थिंक दैट वुड बी रियली रियली कूल टू चेक आउट. ओके, एनीवेज, एक गाना और सुनते हैं एंड देन वी विल कम बैक एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट मे बी वन मोर इवेंट, समथिंग रियली कूल दैट आई फाइंड आउट.

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: I will marry you, so I will wear Kareena wala designer lehenga. Otherwise, I will wear Tata bye-bye.
3: Hey, madam, Kareena wala lehenga and your budget match karega kya?
4: Ab karega, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, men's and kids' wear.
5: Wait, na sab, or price?
4: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
6: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
7: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
6: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
7: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
6: ये क्या होता?
7: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
8: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
4: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
14: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
15: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
14: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
16: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
17: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
18: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
19: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
16: That is right, guys. अगर आपको नहीं पता, then you must call up Omar Khwaja. आपने अभी उनका ad सुना था, but मैं थोड़ा सा और बता दूँ. अगर आप किसी truck या slip and fall incident में फंस चुके हैं, then Omar Khwaja will come and fight your case and he will help you get the compensation you deserve. अगर आप insurance company से भी deal करके थक चुके हैं, then let him handle it for you. भाई, ज़िंदगी में सबसे बेस्ट लग्जरी पता क्या होती है? जब आपको स्ट्रेस में नहीं डील करना पड़ता और आपकी स्ट्रेस कोई और ले लेता है, एंड देन यू जस्ट सिट एंड एंजॉय एंड रीप द बेनिफिट्स. वेल, ही इज गोइंग टू डू दैट बेसिकली फॉर यू. सो ही विल मेक श्योर दैट यू गेट कॉम्पेंसेटेड एंड यू डोंट पे अंटिल यू एक्चुअली विन. सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल 4693005046 और विजिट attorneyomar.com. गाइज, मैं आपके लिए ना बहुत सारे ढूंढ रही थी. मैं बड़ी देर से मैं सर्च कर रही हूँ. मैंने कहा और क्या इवेंट्स हो रही हैं आज DFW में, पर मुझे याद है DFW में तो यार वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, तो लोग डर के मारे कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे भी नहीं, क्योंकि पता क्या होगा, अगर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसका मतलब कोई जाएगा नहीं, क्योंकि सब लोग वर्ल्ड कप में इतना मग्ध वो हो चुके हैं, इतना मैडनेस हो चुका है उसका, दैट एवरीबडी विल गो फॉर दैट वन. उससे याद आया, मैंने माय फ्रेंड वाज शोइंग मी कि वर्ल्ड कप की जो लास्ट वीकेंड की जो मैच हो रही थी डैलस में, पता है कितने की टिकट थी उसकी बिकी? $51,000. Can you believe it? And the seats were not even that great. It was not a VIP box or anything like that. Apparently, the last of the seats sold for $51,000. Uske pehle to 1200-1500 dollar ki to chali rahi thi ticket. Par ye to matlab alag hi level ka ho gaya hai na. Anyways, guys, aap ye wala gana suniye. फिर हम वापस आते हैं एंड थोड़े और बातें करेंगे. ओके okay?

गाइज, वी आर बैक विथ सम अमेजिंग न्यूज़। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, क्योंकि वो मेरा काम है। दिस पार्ट ऑफ द शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय पेज थ्री ईटरी। पेज थ्री ईटरी इज़ ए फैंटास्टिक रेस्टोरेंट दैट सर्व्स सिजलिंग कबाब्स एंड फ्लेवरफुल चाट्स एंड फ्यूजन बाइट्स एंड रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स। इफ़ यू स्टिल हैव एन एक्सपीरियंस पेज थ्री ईटरी, विच इज़ एट हब 121 राइट हियर in McKinney, then you're seriously missing out. This is where bold Indian street food meets modern flair. Whether it's brunch, lunch, dinner date, or a date night, or a, blind date, whatever, or a foodie meetup, Page 3 brings the perfect mix of flavor, energy, and vibrant vibes. So go check out that place. Visit Page 3 Eatery at Hub 121 and then explore more at page3eatery.com. Yaar, mere muh mein to paani aa raha hai. Main kabhi gayi nahi Page 3 Eatery. Kyunki bhai 7 se 10 baje main aapko entertain karti hoon. Agar aapko entertain nahi karungi, to main jaungi. Theek hai, to Friday ke din maybe shayad main jaun. Par tab tak ke liye aap ye wala gaana suniye.

भाई वो गाना था फ्रॉम द मूवी डियर जिंदगी. अगर आपने डियर जिंदगी मूवी नहीं देखी है, इट्स वन ऑफ दोज मूवीज दैट मेक्स यू थिंक. इट्स वेरी ओल्ड वैसे तो, आई मीन नॉट वेरी ओल्ड, मतलब काइंड ऑफ रिलेटिवली ओल्ड, बट इट्स नॉट कि पिछले 1 साल या 2 साल में रिलीज हुई थी, काफ़ी पहले रिलीज हुई थी एक्चुअली. तो मूवी में होता ये है कि आलिया भट्ट, शी इज़ परेशान विथ हर ओन लाइफ एंड शी इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ बैड डिसीजंस एंड देन शी डिसाइड्स टू गो फॉर अ वेकेशन. ठीक है, मतलब कब हुई थी रिलीज, मैं ये भी बता देती हूँ. मूवी रिलीज इन 2016 यू गाइज, लाइक वे बैक वेन. ठीक है, एंड इट फीचर्स आलिया भट्ट एंड शाहरुख खान एंड देर इज़ नो रोमांस बिटवीन द टू ऑफ देम, जस्ट सो यू नो. आई मीन ठीक है, शी थिंक्स दैट ओ आई कुड टोटली फॉल इन लव विथ माई श्रिंक, बट ही इज़ ए प्रोफेशनल एंड ही नोज दैट यू शुड नॉट फॉल इन लव विद योर पेशेंट्स बिकॉज दैट इज एथिकली वेरी रॉन्ग. सो मतलब यू नो यू शुड नॉट डू दैट. एनी वेज गाइज, सो बेसिकली शी इज़ टोटली मेस्ड अप इन हर लाइफ, डूइंग अ लॉट ऑफ बैड डिसीजंस. अपना गुस्सा किसी पर भी निकाल देती है, अपने दोस्तों पर निकाल देती है, कुछ भी कर रही है. फिर वो जाती है, देन शी यू नो गेट्स इन टच विथ हर इनर सेल्फ. शी फाइंड्स कि भाई पीस तो हमारे अंदर ही होता है, हम बाहर ढूंढने जाते हैं. हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये खराब है, वो खराब है, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग अ फिंगर एट अदर पीपल. कभी आप आईने के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल भी देखिए तो शायद आपको अपनी सारी, आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं या फिर आपकी लाइफ में जो भी खराब हो रहा है, शायद उसका सबका आंसर आपको शायद अंदर ही मिल जाएगा. यू नो देर इज़ अ थियोरी दैट अ लॉट ऑफ दीज मैनिफेस्टेशन गुरुज एंड स्टफ लाइक दैट. वैसे तो मैं उतना नहीं मानती उसको, थोड़ा बहुत मानती हूँ, बट दे ऑल से दैट द वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर ऑन द इनसाइड. सो आप जैसे भी बिहेव करेंगे ना दूसरों के साथ, आपको घूम फिर के वैसा ही ट्रीटमेंट आपको मिलेगा. सो इफ़ यू वॉन्ट द वर्ल्ड टू बी अमेजिंग एंड यू वॉन्ट टू बी रिवॉर्डेड, देन यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ फर्स्ट, तभी तो दुनिया आपको वैसे देखेगी. ओके, सो कम बैक, देर इज़ अनदर थिंग दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू दिस दैट आई केम अक्रॉस येस्टरडे नाइट एंड आई थॉट आज मैं अपने शो में उसको डिस्कस करूँगी. तो या वील हैव दैट, पर अभी के लिए ये गाना.

सो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था, हम 5 मिनट में वैसे तो ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी बातें करने का और एक गाना बजाने का टाइम तो है ही हमारे पास. तो जैसे मैंने बोला था, येस्टरडे आई वॉज जस्ट लाइक डूम स्क्रोलिंग एंड स्टफ, एंड देन आई सॉ दिस गर्ल्स पोस्ट. ठीक है, शी हैड एक्चुअली जस्ट शेयर दिस ऑन हर स्टोरी, एंड आई जस्ट हैपन टू कम अक्रॉस, एंड शी सेड कि लो मेंटेनेंस इज नॉट नॉनशालांट. ठीक है, लो मेंटेनेंस इज नॉट समथिंग यू शुड बी प्राउड ऑफ. लो मेंटेनेंस एक्चुअली मीन्स लो एफर्ट. लो मेंटेनेंस एक्चुअली मीन्स लो एफर्ट एंड एक्चुअली लो मेंटेनेंस, वेट, लेट मी रिफ्रेज दैट. लो मेंटेनेंस इज नॉट नेसेसरली लो एफर्ट.

low maintenance actually means low effort. And actually, low maintenance, wait, let me rephrase that. Low maintenance is not necessarily low effort, but low maintenance means low priority. That is what it was. Yeah, low मेंटेनेंस मींस लो प्रायोरिटी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने आप को बड़ी प्राउडली से, बड़े प्राउड प्राइड फीलिंग से आप बोल रहे हो कि आई एम तो लो मेंटेनेंस भाई, मैं तो मतलब आई डोंट केयर अबाउट माई लुक्स, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, उसका मतलब ये है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो. दैट मीन्स देर इज ए डीपर इशू इन साइड यू विच इज मे बी ए लैक ऑफ सिक्योरिटी, मे बी अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मे बी अ लैक ऑफ रिफ्लेक्शन, विच इज़ वाई आप अपने आप को लो मेंटेनेंस बोल के आप उसको पास ऑन कर रहे हो टू द वर्ल्ड एंड यू जस्ट ब्रशिंग इट ऑफ असाइड जस्ट टू गेट अवे विद इट. सो आई मीन दैट वॉज समथिंग दैट एक्चुअली मेड मी थिंक. मैंने कहा यार आई हैव ऑल्सो बिन इन दैट फेज, यू नो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ आई एम टोटली नॉट लाइक दैट, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज लाइक दैट. एनी वेज गाइज, ये गाना सुनते हैं एंड देन कम बैक एंड वील टॉक सम मोर अबाउट दिस. इफ यू हैव एनी थॉट्स रिगार्डिंग दिस, फील फ्री टू कॉल मी एंड शेयर वॉट यू थिंक अबाउट इट.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंट

0: celebration, Tanma Jewelers in Irving.
1: Tune sunte hi brand click kar gaya na, just like that. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
2: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
3: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
4: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Documents ya parcel bhejni hai?
9: हाँ.
8: घर रिलोकेट करनी है?
9: हाँ.
8: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
9: हाँ भाई हाँ.
8: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
10: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
11: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
12: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
13: Aaj sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
14: India mein? To yahan jo friends aur relatives hain, wo kaise attend karenge?
13: Par yahan sare arrangements manage karna bhi to kitna mushkil hoga.
14: Hello, tum Dallas mein ho. Yahan koi bhi event karna super easy hai, especially jab Vanessa Events ka saath ho.
13: Sach mein? Sab sambhalenge?
14: Are sab kuch, wedding ho, housewarming, graduation, you name it, they deliver. Venue, photography, hospitality, sab kuch ek hi jagah. Signature events ka decor aur khana by the renowned Basera Grand only.
15: Call Hari Basera on 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
16: Friends, we are back और अभी time हो चुका है आपके favorite वाला time. कौन सा है? Giveaway का time, that is correct. भाई अभी हम giveaway करने वाले हैं. आपको पता है कि ये giveaway क्या होता है? Exactly. मैं जैसे बोलती हूँ, मेरे giveaway का theme is copycat song. हाँ जी भाई, copycat song. तो मैं एक कोई भी लैंग्वेज में एक गाना बजाऊंगी और उसका बॉलीवुड कॉपी गाना आपको मेरे को बताना है कि कौन सा गाना है कि वो बॉलीवुड कॉपी किया गया है. एंड दूसरा, आप अगर मेरे लिए गा देंगे तो आपको मेरी तरफ से एक स्पेशल उपहार, वो क्या है? बहुत सारा प्यार. तो एनीवेज गाइस, दिस नेक्स्ट सॉन्ग आई एम गोना प्ले इट फॉर यू. बट लेकिन उसके पहले ये तो बता दूं कि आप जीत क्या रहे हैं आज. आज का गिव अवे है फन पिज्जा किचन का गिव अवे. आर यू क्रेविंग समथिंग चीजी विद अ देसी ट्विस्ट? फन पिज्जा किचन इज वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. टू ऑल माय वेजी लवर्स, आपको उनका अचारी पिज्जा पनीर ट्राई करना पड़ेगा, अचारी पनीर पिज्जा ट्राई करना पड़ेगा. दैट इज पैक्ड विद टैंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर दैट मेल्ट्स इन योर माउथ. यम यम यम. एंड फॉर माय नॉन वेजिटर्स, तंदूरी चिकन पिज्जा इज प्योर स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बड्स. तो अगर आपको बोल्ड फ्लेवर्स चाहिए या बैलेंस फ्लेवर्स चाहिए, भाई फन पिज्जा किचन जाइए, वहां पे बहुत सही सही पिज्जा मिलता है. ठीक है, बोलते बोलते देखो मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है कि मैं अपना अपनी बातें भी नहीं कर पा रही हूँ. तो आपको क्या मिलेगा ये गिव अवे में? आपको मिलेगा $10 का गिफ्ट कार्ड विच यू कैन रिडीम एट द फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को. दैट इज करेक्ट, इन फ्रिस्को. दैट्स द लोकेशन दैट यू नीड टू गो टू. तो क्या आप सब रेडी हैं? भाई ये वाला वेरी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये आपको शायद बिल्कुल भी नहीं मालूम होगा. तो हम क्या करेंगे, मैं आपको वो वाला गाना प्ले करूँगी, फिर आप मुझे उसका हिंदी वाला गाना बताइए. इट्स नॉट अ न्यू ट्यून बाय द वे, काफ़ी पुराना गाना है. आई विल गिव यू अ लिटिल हिंट. और इट फीचर्स आशा पारेख इन द वीडियो एंड इट्स फ्रॉम दिस मूवी इन 1966. अब मैं मूवी का नाम नहीं बता रही, नहीं तो पता ही चल जाएगा. आप खुद से भी तो गेस करिए, है ना? तो चलिए लेट्स लिसन टू द ओरिजिनल.

आपको सायोनारा भीम, क्योंकि मैं अभी भी हूँ यहाँ पे भाई, 2 घंटे और, ऑलमोस्ट 2 घंटे, पूरे 2 घंटे तो नहीं, ऑलमोस्ट 2 घंटे, 10 बजे तक मैं अभी भी हूँ. तो देर इज़ नो मोर सायोनारा फ्रॉम माई साइड. लेकिन आपको फन फैक्ट पता है क्या है इस गाने के बारे में? तो ये हमने अभी कॉपी कैट खेला, दोज ऑफ यू जस्ट जॉइंड अस, ये जो पहले मैंने आपके लिए जो ओरिजिनल गाना बजाया था उसका नाम पता है क्या था? ये मेरे लिए भी न्यू इन्फॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई आई थॉट आई मस्ट शेयर इट विद ऑल माय लिसनर्स. तो ये ओरिजिनल गाना है, द नेम ऑफ द सॉन्ग इज कॉल्ड इन अ पर्शियन मार्केट. गाइज, इट हैज़ नथिंग टू डू विद जापान. मतलब जो शंकर जयकिशन है जिन्होंने सायोनारा कंपोज किया, उन्होंने वो जो फर्स्ट पार्ट की जो मेलोडी थी वो उठा के फ्रॉम दिस सॉन्ग विच वॉज टाइटल्ड इन अ पर्शियन मार्केट उठा के वो सायोनारा में डाल दिया. एंड देन दे बिल्ट अपॉन इट. मतलब ये नहीं कि पूरा गाना रिप ऑफ किया, वो छोटी सी मेलोडी की लाइन कॉपी करके डाल दी थी. तो एनी वेज, आई थॉट दैट वॉज अ प्रीटी कूल इंस्पिरेशन. और आप सबको फिगर आउट भी हो गया क्योंकि वो एकदम एग्जैक्टली सेम है ना, उतना सा पार्ट. तो इन अ पर्शियन मार्केट है कौन सा गाना? फन फैक्ट, इट इज ए पीस ऑफ लाइट वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक. अगर आप वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं जैसे बीथोवन, मोजार्ट, बाक, देन यू नो देन दैट दिस इज ऑल्सो ए लाइट क्लासिकल म्यूजिक पीस विच वॉज ओरिजिनली ऑर्केस्ट्रेटेड फॉर द थिएटर. बाय हुम? बाय एल्बर्ट केटलबे, हु कंपोज्ड इट इन 1920. Isn't it cool? मतलब सायोनारा वॉज रिलीज इन 1966 एंड द ओरिजिनल ऑफ दैट सॉन्ग वॉज कम्पोज इन 1920. एंड फन फैक्ट पता क्या है? लिखा तो वह उन्होंने इन अ पर्शियन मार्केट, ठीक है, पूरे ऑर्केस्ट्रा के लिए बनाया हुआ है विद स्ट्रिंग्स एंड पियानो एंड वगैरह वगैरह परकशन एंड बहुत कुछ है ऑर्केस्ट्रा में. लेकिन देयर आइडिया वॉज टू बेसिकली रेप्लीकेट द साउंड दैट दे हैव Imagined what a Westerner would think, what the Middle Eastern or like India or that area would sound like. So when the song was actually performed, there was a synopsis of scene by the composer where he mentions जब उसको perform किया था, एक caravan arrive होता था stage पे, कुछ भिखारी भी आते थे. There was some people dressed up as beggars who would come. There was a princess who was carried by their servants in a palki, some jugglers, snake charmers, and a caliph. After the prince and the caliph left, a muezzin calls to the prayer from the minaret. मतलब आजान होती थी मिनरेट से. And then the caravan continues its journey and the market becomes silent. The duration is around 6 minutes. और फिर वो गाना शुरू होता था जो दा दा दा दा दा दा दा दा, और गाने के बीच में कुछ भिखारी आते थे और वो कहते थे बख्शीश बख्शीश अल्लाह बख्शीश, बिकॉज अपेरेंटली दिस इज़ वॉट ऑल वाइट पीपल, नॉट वाइट पीपल, आई एम सॉरी, ऑल वेस्टर्नर्स थिंक वॉट इंडियन म्यूजिक साउंड्स लाइक और वॉट साउथ एशिया लुक्स लाइक और वॉट साउथ यू नो द मिडल ईस्टर्न लुक्स लाइक. एटलीस्ट बैक इन द डेज, नाउ इट्स डिफरेंट. Now it's completely different, but there is a lot of generalization when it comes to Indian people. It's quite amazing, isn't it? So the music was also inspired by that, and then it was ripped off and put it in a Japanese context. Wow, एक चीज आप कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं? That is very inspiring or innovative. Something to get your creative juices flowing for today. Anyways, enjoy this next song. We'll be back with another giveaway after 8:30.

Very cool. So, guys, this next part of the show is brought to you by, wait for it, PMJ Jewels. Dallas, the wait is over. PMJ Jewels is now coming to Frisco, bringing over 60 years of jewelry experience and timeless Indian craftsmanship, exploring stunning gold, diamond, and bridal collection for every celebration and milestone. Join the grand opening celebration starting June 20th and enjoy exclusive offers, exciting festivities, and chances to win beautiful jewelry pieces. Proudly associated with Mahesh Babu and Sitara Ghatamaneni, PMJ is a name trusted by generations. Visit PMJ Jewels in Frisco on Main Street and discover jewelry that tells your story. Guys, लाइफ में भाई ज्वेलरी खरीदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता है क्या होता है, देर आर सम ऑफ दीज मैनिफेस्टेशन गुरुज जो कहते हैं आप जितना गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ही गोल्ड वापस मिलेगा, जितना आप पैसा खर्च करोगे उतना पैसा आपको वापस मिलेगा. तो इट्स इम्पॉर्टेंट, ऐसे ऐसा भी नहीं है कि आप सारे पैसे खर्च कर दो, मतलब थोड़ा सोच के, बट यू शुड लर्न टू एन्जॉय लाइफ, है ना? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि लाइफ बहुत हसीन है तो हमें उसको एन्जॉय करना चाहिए.

0: जो चौका उड़ते हुए जाए उसे छक्का कहते हैं।
1: क्या डायलॉग है यार, जो चौका उड़ते हुए जाए उसे छक्का कहते हैं। आई मीन मतलब फैक्ट तो है, इतनी जोर से आप बैट स्विंग करो कि वो चौका नहीं सीधा छक्का जाना चाहिए, है ना? दैट्स द वे टू गो। एनीवेज गाइस, दिस नेक्स्ट पार्ट, वेल यू शुड चेक आउट कॉकटेल 2 व्हिच इज रिलीजिंग दिस फ्राइडे, दैट इज ऑन जून 19th। फ्राइडे छुट्टी भी है, फेडरल हॉलीडे है, तो मेक श्योर यू गो चेक आउट कॉकटेल 2 आफ्टर द सुपर हिट सक्सेस ऑफ 2012's कॉकटेल। द ड्रामा, रोमांस एंड फ्रेंडशिप आर बैक विद ए फ्रेश ट्विस्ट। गेट रेडी फॉर कॉकटेल 2 व्हिच इज रिलीजिंग दिस फ्राइडे, जो कि मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति शैनन एंड रश्मिका मंदाना। A new story, new emotions, and new brand new cocktail of love, friendship, and heartbreak awaits you. That is correct. भाई cocktail 2 बहुत मजेदार होने वाला है। अगर आपने फनीशा का आज का रील नहीं देखा तो फनीशा के इंस्टा पेज पे जाइए, आज का रील देखिए। भाई मेरा वीडियो है, मैं जो यहाँ पे इतने मजेदार मजेदार गाने बजाती हूँ, एंड देन मैं खुद ही अकेले स्टूडियो में डांस पार्टी कर रही होती हूँ, मैंने उसकी ना स्टोरीज डालती रहती हूँ। तो द पीपल हु आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टा वो तो देख ही सकते हैं, और जो नहीं फॉलो करते हैं मुझे वो भी देख सकते हैं अब, क्योंकि फनीशा ने वैसे ही डाल दिया, मेरे को टैग भी कर दिया, तो आप मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं, सो दैट यू कैन सी मोर अपडेट्स अबाउट मी एंड माई लाइफ एंड ला ला ला। एनीवेज गाइज, जैसे मैंने आपको कल बोला था, आज बहुत स्पेशल डे है। पता है क्यों आज स्पेशल डे नहीं, आज एक्चुअली स्पेशल बहुत स्पेशल वीक है, बहुत ही मज़ेदार वीक है, क्योंकि टुडे दिस वीक इज योर लकी वीक, क्योंकि एक गिव अवे नहीं है हमारे पास, दो गिव अवे है। एक तो था हमारा फन पिज्ज़ा किचन का यमी यमी पिज्ज़ा का गिव अवे, और दूसरा है फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज। बाय द वे दिस गिव अवे इज ओनली अवेलेबल ऑन डाइन इन, तो टेक अवे मत करिए, बैठ के खाइए। आई मीन देयर इज अ डिफरेंट चार्म टू सिट एंड जस्ट एंजॉय योर फूड एट अ रेस्टोरेंट, यू नो। टेक अवे घर पर तो हम हमेशा रोज ही खाते हैं, मतलब गो टू द रेस्टोरेंट एंड एंजॉय द फूड, लेकिन आपको मिलेगा क्या, ये क्वेश्चन आप आंसर करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? तो आपको मिलेगा एक दाल मखनी या फिर एक ढाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज रेस्टोरेंट लोकेटेड एट प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। दिस गिव अवे इज फॉर डाइन इन ओनली, जो कि मैं बता चुकी हूँ। प्लीज मेक श्योर कि आप पिछले एक महीने में ये गिव अवे नहीं जीते हैं, मतलब कई बार होता है कि भैया बाकियों को भी चांस देना चाहिए, आपको हर वीकेंड पे फ्री खाना मिलेगा तो बाकी क्या करेंगे, सबको मिलना चाहिए ना अपॉर्चुनिटी। तो मेक श्योर यू हैव नॉट वन दिस गिव अवे, और आपके पास 7 दिन है इसको रिडीम करने के लिए, वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में ही बता सकती हूँ। लेकिन जैसे हमारा कॉपी कैट सॉन्ग का गिव अवे था, तो आज एक नया कॉपी कैट सॉन्ग का बजाते हैं, ठीक है, गाना। तो आप मुझे उसका आंसर दीजिए, माई फोन नंबर इज 9722355555, एंड यू गाइज बाय द वे आर लिसनिंग टू Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM, and this is my show, An Evening in Dallas. ठीक है, तो check out this song and tell me if you can figure it out, और dial करते रहिए.

नहीं सोचो सोचो, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सोचो, आमिर खान की पिक्चर का गाना है, फिर से आमिर खान की पिक्चर का गाना है, और फादर्स डे के ओकेजन पे स्पेशली ये गाना बहुत वैलिड है। फादर्स डे आने वाला है संडे को,

0: हाय फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर. क्या आपको आंसर पता है इस क्वेश्चन का?
1: हाँ, आई
0: ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपना नाम बताइए एंड देन टेल मी द आंसर.
1: थिंक मेरा नाम है अजहर
0: अजहर.
1: और आंसर है तू मेरा दिल तू मेरी जान, आई लव यू डैडी।
0: ये एंड यू हैव वन द गिव अवे. वू, कांग्रेचुलेशंस
1: थैंक यू।
0: अजहर. आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर, ठीक है? और आपका इन्फॉर्मेशन मैं लेती हूँ एंड देन उसके बाद तब तक के लिए मैं ये गाना चलाती हूँ. दिस सॉन्ग गोज आउट टू ऑल द फादर्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज फादर्स डे आने वाला है. गो थैंक योर डैड फॉर ऑल एवरीथिंग दैट दे हैव प्रोवाइडेड यू विद एंड एवरीथिंग दैट दे हैव डन फॉर यू. ओके, एंड देन आई विल गिव
1: Thank you
0: यू.
1: so much. My daughter is so happy.
0: ये गुड. वेल, ऑन फादर्स डे मे बी यू कैन टेक हर आउट, मे बी यू कैन मेक इट इन टू अ
1: Yeah.
0: डॉटर्स डे. बट स्टे ऑन द लाइन
1: Absolutely.
0: बिकॉज आई टेक योर इन्फो आफ्टर दिस. डोंट हैंग अप.
1: Thank you. Sure,
0: ओके,
1: thank you.
2: तू मेरी जान, ओह.

जानू ना, कितना प्यारा गाना है यार। आई थिंक उसमें बीच में जो मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं उनको पता भी शायद होगा कि बीच में रविंद्र संगीत की एक लाइन भी डाली हुई है इस वाले गाने में, बिकॉज शांतनु मोहितराव द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग, ऑफ कोर्स ही इज बंगाली, राइट? तो एनीवेज, वर्ल्ड म्यूजिक डे भी आने वाला है गाइज। मुझे म्यूजिक से बहुत प्यार है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी म्यूजिक के पीछे पागल होके गुजार दी, क्योंकि मैंने करियर पढ़ाई करी अपनी अच्छे से, लेकिन करियर मैंने अपना परस्यू नहीं किया सोशियोलॉजी में, जो मेरा ओरिजिनल मेरा अंडरग्रेड और मास्टर्स भी था, क्योंकि मुझे म्यूजिक से इतना प्यार था। मैंने बोला मम्मी मुझे नहीं करनी रिसर्च, मैं जा रही हूँ म्यूजिशियन बनने, बिकॉज आई लव इट। एंड दिस वॉज ए वेरी वेरी वेरी रिस्की चांस दैट आई टुक, बट थैंकफुली इट हैज़ वर्कड आउट इन माई फेवर, बिकॉज आई वॉज डिटर्मिंड कि भैया मरते दम तक यही करना है, अब यही करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? तो इसीलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये बताने में दैट फन एशिया इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे, बिकॉज एवरी मोमेंट हैज अ सॉन्ग, हर मूड की एक धुन होती है, चाहे वो प्यार भरा मूड हो या दिल टूटने वाला मूड हो, शादी वाला मूड हो या फिर एक पार्टी फेवरेट हो, है ना? तो वी वॉन्ट टू नो योर टॉपिक्स जून 1 और जून 15 जो कि अभी चल रहा है, बस कुछ ही दिन और बचे हैं भैया। आज लास्ट डेट है, जून 15 है ना आज? हाँ, जून 16 हो गया, कोई बात नहीं, आप आई थिंक आप फिर भी फॉर्म भर सकते हो, कोई बात नहीं। वैसे तो हमने बोला था जून 1 से जून 15 तक, बट 16 हो गया, आई थिंक यू कैन स्टिल फिल आउट एंड नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग्स अक्रॉस डिफरेंट जॉनरस। लेकिन कहाँ पे नॉमिनेट करेंगे यार? ये नॉमिनेट आप करेंगे हमारे किसी भी सोशल मीडिया पेज पे जाके, देर इज अ गूगल फॉर्म और वहाँ पे आप अपना फॉर्म भरिए, एंड इफ योर सॉन्ग गेट्स सिलेक्टेड देन यू कैन विन सम स्पेशल प्राइजेस। 21 को वर्ल्ड म्यूजिक डे के दिन हम लोग अनाउंस करेंगे फाइनल विनर्स कौन कौन से हैं और क्या क्या होगा। गाइस कितना मजेदार होने वाला है, अगर आपका गाना सिलेक्ट हो गया तो कितना अमेजिंग नहीं होगा? ओह वाओ, आई लव दिस रॉक सॉन्ग फ्रॉम रॉक ऑन, मेरी लॉन्ड्री का वो बिल वगैरह वगैरह, इस तरह से गाने हम प्ले करेंगे। सो कूल, राइट? एनीवेज गाइस, वेल इट इज़ टाइम टू ऑलमोस्ट गो इन टू आर नेक्स्ट ब्रेक, लेकिन जाने से पहले आई एम फीलिंग वेरी लकी, आई नो माई विनर्स ऑफ द गिव अवे आर ऑल्सो फीलिंग लकी, तो ये लकी फिल्म का गाना आपके लिए।

0: गाइज, वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक इन 1 मिनट, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं, क्योंकि फिर 9 o'clock से 10 o'clock तक अनाउंसमेंट्स कम होगी, है ना? जितनी मैं अभी करूंगी उतनी तब कम होगी, तो तभी हम सिर्फ म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक सुनेंगे. तो गाइज, दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द यूएस. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. कॉल 4699429888 और विजिट agfintechs.com. भाई, जब हम वापस आएंगे, कितने मज़ेदार गाने मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए. सम थिंग्स फ्रॉम वे बैक वेन, अर्ली 90s, लेट 90s के गाने, बिकॉज आई एम सुपर नॉस्टैल्जिक विद ऑल दैट स्टफ. एंड देन वी हैव सम मोर मॉडर्न स्टफ ऑल्सो फॉर दिस लास्ट आवर. आई एम टेकिंग रिक्वेस्ट. तो अगर आपको कोई स्पेशल गाना सुनना है या स्पेशल डेडिकेशन देनी है टू योर लव्ड वन, देन कॉल मी 97.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.

0: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
1: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. लॉसिन ट्रैवल. फॉर नियरली 30 years लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस. लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री. Call now 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
2: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal, call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
3: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
7: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

Guys, in other news, by the way, did you see that Priyanka Chopra is now the brand ambassador for Rolex? That is correct, guys. She has been named as a brand ambassador for Rolex. Isn't that amazing? Such a proud feeling. मतलब Rolex कितनी बड़ी कंपनी. It's not even any makeup brand or anything. It's like Rolex is equal to luxury. Rolex is equal to class, and Rolex is equal to status. I mean, now the fact that Priyanka Chopra, my homegirl, our homegirl, who's in America, yes, she is the brand ambassador for Rolex. I think that really means something, right? Anyways, guys, it is almost 9:12. It is almost 9:12. 9:12 हो चुके हैं on the clock. मैं बहुत थक गई हूँ. आज तो मेरे बिल्कुल 12 बजे हुए हैं. आई हैव लाइक जीरो एनर्जी क्योंकि लास्ट फ्यू डेज, इनफैक्ट लास्ट फ्यू डेज नहीं, वैसे सिर्फ ट्यूसडे ही हुआ है, लेकिन मंडे से आई हैव स्टार्टेड पुलिंग ए 14 आवर शिफ्ट, विच मीन्स 14 आवर शिफ्ट मतलब क्या, मैं सुबह काम शुरू करती हूँ 8:30 बजे और यहाँ पे मैं ख़त्म करते करते 10 बज जाते हैं, फिर मैं घर पहुँचते वहाँ से 10:30 बज जाते हैं. सो इट्स बेसिकली 8:30 बजे से 10:30 बजे तक मैं नॉन स्टॉप काम कर रही होती हूँ. आई फर्स्ट टीच समर कैंप्स, देन आई टीच प्राइवेट लेसन्स, फिर मैं यहाँ आती हूँ. मतलब इट्स बैक टू बैक टू बैक एंड मैं थक चुकी हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ बेयर विद मी. बातें कम होंगी, गाने ज़्यादा होंगे, बिकॉज दैट्स हाउ आई रिकूपरेट. एंड वी शैल प्ले सम मोर म्यूजिक. एंड ऑल्सो इफ यू गाइज हैव सम ब्यूटिफुल रिक्वेस्ट देन डू कॉल मी अप, आई विल प्ले योर रिक्वेस्ट. ओके, एन्जॉय दिस वन.

0: देखो ताजमहल,
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
0: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत,

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
3: Is शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
4: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
5: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
6: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
5: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
11: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
12: Guys, 9:30 बज चुके हैं, घर जाने का टाइम आ रहा है धीरे धीरे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक छोटी सी अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बाद एक बड़ा सा प्यारा सा गाना बजाएंगे, ठीक है? बहुत बड़ा गाना तो नहीं, छोटा सा ही गाना है, बट प्यारा सा गाना है, विच आई रियली रियली लव। एनीवेज, बट बिफोर दैट, Passion Health Care, Passion Health Primary Care. How much time does your doctor spend with you? 5 minutes, 10 minutes, या फिर मतलब 30 मिनट? पता नहीं, आपका डॉक्टर है, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन at Passion Health Primary Care, every appointment is scheduled for 30 minutes, because truly understanding your health takes time. At Passion Health, you're not just a patient. आप हमारे family जैसे हैं. For you, your family, and for the health of our community, Passion Health Primary Care. This is not all. They are actually hiring. They are growing, and they are hiring experienced primary care doctors, endocrinologists, pediatricians, psychiatrists for full-time and part-time opportunities. If you're passionate about patient care, send your resume to passionhealthphysicians@gmail.com, or you can also text 217-454-4639 or visit passionhealthphysicians.com or text
13: 214-666-6259 for more information. Passion Health Primary Care, your health is our passion and everyone's passion and their passion especially, okay? We hope you're having a great Tuesday night. Well, I'm going to play you this incredible song, which I love. Actually, this is one of my cardio songs. When I'm in the gym, mein hoti hu na, to main apni treadmill pe jo incline walk hoti hai, wo five incline pe, you know, four speed pe, jab main aise speed walking kar rahi hoti hu, then I listen to this song. And it's really nice. I really like it.

गाइस, लास्ट के 10 मिनट बचे हैं और मैं ये कहना चाहूँगी, कल मैंने ना बड़ी अमेजिंग सी चीज़ देखी और मैं अभी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते दोबारा वो चीज़ आ गई जो मैं भूल चुकी थी. लेकिन वो चीज़ पता क्या थी? आई एम नॉट रियली बिग ऑन फ्लावर्स. तो मुझे कोई आके पूछता है, ओ व्हाट्स योर फेवरेट फ्लावर, तो लोग कई लोग कहते हैं कि माई फेवरेट फ्लावर इज़ लाइक लिलीज और रोज़ेस, ऐसे ऐसे करके. भाई आई एम नॉट अ बिग फ्लावर पर्सन. तो कोई भी मुझे बर्थडे पर भी कोई देता है ना, या फिर कोई बंदा भी मुझे कोई फ्लावर देने के लिए इम्प्रेस करता है, मैंने कहा यार आई डोंट रियली लाइक इट बिकॉज वो कुछ दिनों बाद मर जाता है. मैं हमेशा वो ही कहती हूँ कि अगर आपको मुझे कुछ देना है तो प्लांट्स दीजिए. प्लांट्स ज़्यादा चलती है एंड दे आर ऑल्सो यू नो समथिंग दैट आई कैन कीप इन माई हाउस फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड आई रियली लाइक इट. बट एनी वेज, यू नो वॉट इज़ द अदर ऑप्शन आई सॉ येस्टरडे एंड दिस वॉज आई थिंक द बेस्ट बुके ऑफ ऑल टाइम्स. इट्स नॉट अ प्लांट बुके, इट्स अ बुके ऑफ लीचीज. ओ माई गॉश, इट वॉज सो गुड. आई सॉ दिस पर्सन, ही वॉज ट्राइंग टू इम्प्रेस हिज गर्ल, बट इंस्टेड ऑफ बाइंग हर अ बुके ऑफ रोजेस, उसने बड़ी सारी लीची खरीदी. वो रेड़ी वाले से लीची नहीं खरीदी, इंडिया में तो खैर रेड़ी वाले के वहीं पर समर में मिलता है ठेले पे, और उसने ना डंडी वाली लीची खरीदी. और लीचियों के एंड्स में ना देयर इज द स्टेम एंड देन ही टुक इट टू हिज फ्लावर शॉप और बोला कि भैया इसको बुके बना दो. और उसने इतना सही लीची का बुके बनाया, मतलब गुलाबों से भी खूबसूरत लग रहा था. ओ हो, व्हाट अ वाइब भाई. यहाँ पे कोई मुझे लीची का बुके दे देगा मैं तो खुशी हो जाऊंगी. एनीवेज गाइस, लास्ट कितने हैं, 10 मिनट ही बचे हैं. आप ये गाना सुनिए एंड देन आई वांट टू प्ले वन मोर सॉन्ग. आई होप यू हैव ए वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर वीक. आई विल सी यू टुमारो एंड देन ऑन थर्सडे. लेट्स हैव सम फन, ओके? लेट्स, आई ब्रिंग सम मोर एनर्जी. आज मैंने ना सारे दिन में शुगर ज़्यादा खा लिया तो मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है. शुगर खा के मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है. बट टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट डे, सो एन्जॉय दिस सॉन्ग.

right, guys, this is the last song for this evening. अगर आपको ये गाना पसंद आए या नहीं भी पसंद आए तो कोई बात नहीं, चलेगा. यू हैव द राइट टू हैव योर ओपिनियन. मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है घर और जाके मुझे सोना है. लेकिन ये जो अगला गाना है, क्या आपको पता है, देयर इज दिस पाकिस्तानी डुओ कॉल्ड स्ट्रिंग्स विच वॉज इनसेनली पॉपुलर इन इंडिया ऑल्सो इन द अर्ली 2000s. And they had actually done the original soundtrack for Spider-Man 2, I believe, or Spider-Man 2 or Spider-Man 3. No, I think it was Spider-Man 2 with Tobey Maguire and Kirsten Dunst. Isn't that cool? So anyways, I'm going to play that song for you. I hope you guys enjoy.

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। AG फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 4253954318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद AG फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
3: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
4: Food not included at the mention.

0: price. Terms and conditions apply.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 द जागो टाइम्स कमीशन जागो भी जगाओ भी एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया
2: ड्यूड लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं
1: फ्रंट पेज का तो पता नहीं पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है
2: कैसे
1: पेज 3 ईटरी
2: नो नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन
1: ड्यूड इट्स पेज 3 स्टार्ट विद द बार सिग्नेचर कॉकटेल्स क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग एवरी एपेटाइट
2: मतलब ग्रेट फूड ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी यानी कि मैं
3: पेज 3 ईटरी ईट सिप गॉसिप रिपीट
4: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
2: Ek baar jo maine commitment kar di, to phir sirf Fun Asia hi sununga.

देख के तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

Rest a while and run a mile with Fun Asia Radio.

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।
1: तुमने दुबई के चक्कर में हमसे ब्याह किया, हमसे कतई प्यार नहीं था।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: म्यूजिक एमजी, तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़के।

रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, हमें साथ रखिए। मंजिल तक पहुंचने में शायद वक्त लगे, हमें साथ रखिए। आपका साथी, आपका हमसफर, हर पहर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

नेकी कर दरिया में डाल। ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

0: रखा था।
1: वेरी गुड। और ये कौन है?
2: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
1: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल, धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

FM turns up the heat in Dallas.

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फनेजा रेडियो के संग।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: help me.
1: Kaash,
0: please help me.
1: Tu meri aankhein bhar de.
2: Aise kaise gayab ho gaye?
3: Pata nahi sir.
2: Arey, recordings lined up hai, shows organized kiye hue hai. कौन करेगा ये सब? पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों।
3: जी सर, पता लगा रहा हूँ।

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।
1: Right back.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure on 104.9 FM.

0: नाच शुरू करें?
1: Don't touch that dial. Keep listening.

0: डक टाइम।
1: मामू देखो क्या हो गया।
2: ओ क्या हो गया?
1: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
2: ओए जर्मन का कमाल है,
1: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
2: ओए नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
3: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
4: इफ यू आर एवर इन्वॉल्वड इन अ कार एक्सीडेंट, रिमेंबर दीस इंपॉर्टेंट 3 टिप्स। फर्स्ट, स्टे कॉम। सेकंड, चेक फॉर इंजरीज एंड मूव टू अ सेफ प्लेस इफ पॉसिबल। Third, gather information by taking pictures, exchanging contact information, and insurance details. Always, always file a police report. Remember, never ever admit fault at the scene. Even minor injuries can turn serious, so seek medical attention right away. The law offices of Omar Khwaja specializes in personal injury law, and we are here to help you navigate through the legal process. Call us for a free consultation at 1-833-GET-OMAR or visit our website at attorneyomar.com for your free consultation. We can't wait to hear from you.
5: सबसे पहले तारीफ सुपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया। उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी कैन स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम ऑन दिस लवली वेंसडे मॉर्निंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स द 17th ऑफ जून टुडे एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द शो।

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson, and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out, or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
5: Call the SBA Loan Experts.
4: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
5: Call the SBA Loan Experts.
4: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
5: Call the SBA Loan Experts.
4: Construction हो या renovation, business खरीदना हो या refinance कराना हो, for all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA Loan Experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
11: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
10: वे एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वे टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
12: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
13: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
12: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
13: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
1: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support, aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia, get $100 off your first month.
12: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, fir puja ka saman, gifts bhi khareedne hain aur in sab kuch ke baad mein कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
1: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
13: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोवेस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
1: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब।
14: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
15: बाइंग और सेलिंग अ होम isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
16: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty. I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
2: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
17: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
18: इंडिया में?
17: तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: And on the evening of today's date in 2015, a mass shooter took the lives of 9 African-American people at a Bible study at the Emmanuel African Methodist Episcopal Church in Charleston, South Carolina. And this massacre at a historic black church deeply shook a nation, already jaded by frequent gun violence, and heralded a new chapter of violent white nationalism in America. Gloria Vanderbilt died on today's date in 2019 in New York, the American socialite, artist, author, actress, and designer of textiles and fashion. Often in the public eye for her social life and professional exploits. And it was on today's date in 2021 that Juneteenth was established as a federal holiday.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
3: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
4: हाँ।
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ।
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ।
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
5: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
0: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
6: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
0: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग। अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स। जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
7: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
8: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
8: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205.

0: Yo-Yo Honey Singh's Desi Kalakar, taking us to a quick break here. Let's get you some messages from our advertisers and sponsors, and then we will have world news and plenty more coming up.
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Aaja meri gaadi mein baith ja.
4: Baith jaau? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
5: Wo thoda overheating tha.
4: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
7: इन प्लेनो
6: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपेटिटर कोर्ट मैच भी कॉल 4692983870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
8: हे तुमने कभी इंश्योरेंस लिया
9: लिया
8: कभी पॉलिसी समझ भी आया
9: नहीं आया
8: मुझे भी नहीं आया आएगा भी कैसे इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस वेदर इट्स होम ऑटो हेल्थ और बिजनेस एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू होटल्स मोटेल्स गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर नो कंफ्यूजन नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772 That's 972-863-772
4: Visit www.senadainc.com today
10: घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी
5: आती है यार बहुत आती है इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ
4: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं विजिट चंडीगढ़ वाले जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट
5: सच में बिल्कुल घर जैसा
4: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी बटर चिकन एंड मेनी मोर लोकेटेड इन अर्विंग देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट चंडीगढ़ वाले टेस्ट दैट फील्स लाइक होम
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
13: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
15: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
16: Calculating route, rerouting.
15: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
16: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
15: क्यों?
16: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
15: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
16: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
17: लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर नॉट रेडी फॉर दिस फ्रिस्को में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन वही स्वाद वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस फेमस गर्मा गर्म पराठे रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन Your first visit.
18: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.

0: Want to quickly remind you about PMJ Jewels is now coming to Frisco. They are bringing over 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship here to all of us. You can explore stunning gold, diamond, and lots of bridal collections. And these are great for all kinds of celebrations and milestones that are coming your way in your lives. So you can join the grand opening celebrations that are starting on Saturday, and you'll enjoy exclusive offers, exciting festivities, and chances to win beautiful jewelry pieces. Proudly associated with Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni, PMJ is a name trusted by generations. You can visit PMJ Jewels in Frisco. They're on Main Street near Coit Road, and you can discover jewelry that tells your story. Happy to talk about them, and hoping to see all of you there this Saturday. Let me end my show here on this lovely Wednesday morning. It's the 17th of June today. We are heading towards a hot day. It's going to be 95, and our heat index is going to be approaching 105. I'm sorry. Stay cool, please. And particularly if you're one of the 80,000 people headed to the Dallas Stadium, which is the AT&T Stadium in Arlington, for the big World Cup match here in Dallas today. England and Croatia kicking it off at 3 p.m. today. Enjoy the match, but please remember to stay cool. That, ladies and gentlemen, is my show for today. Me Too's coming on right after me. You'll continue listening to the Fun Asia Network. And if you have any questions about advertising or anything to do with the Fun Asia Network, I'm going to leave the studios here, but I'll leave my direct number so y'all can call me. 214-675-1754. 214-675-1754. And if I have your best wishes, I'll be back at 7 o'clock tomorrow morning. It's 10 a.m. right now.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
5: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
6: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
5: कहाँ?
7: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट family dinner.
8: Foodistan in Aubrey. Everything they see. One place, one vibe.
9: Ritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
10: Arey relax, sab tumhara hi to hai.
9: Sach? Ya phir court decide karega?
10: Wait, what?
11: Yes, agar proper estate plan nahi hai, to aapki family ke decisions court leta hai.
12: Hi, this is Deepti Varma with NRI Wealth. Main families ko help karti hoon unki mehnat ko protect karne mein. The right way with estate planning.
11: Agar aapke paas sirf will hai ya kuch bhi nahi hai, to ye call delay mat kijiye. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
13: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
14: अपनी रूट्स भी
5: और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
14: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
15: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
16: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
17: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
18: नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती।
19: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपरहिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदना। गेट रेडी एज द परफेक्ट कॉकटेल मिक्सचर विद कॉकटेल 2, रिलीजिंग ऑन द 19th ऑफ जून।

And these words have found way in our dictionary. ये मितवा, ये इस तरह के शब्द हम कहाँ रोजमर्रा की जुबान में यूज करते हैं, राइट? डे टू डे लाइफ में हमारा ऐसा हाल है कि हम इंग्लिश और हिंदी मिला के या इंग्लिश और उर्दू मिला के हम बात करते हैं, राइट? और ऐसे में इस तरह के कुछ प्योर वर्ड्स जब हमें मिलते हैं, दे स्टिक विथ अस, एंड इट इज ग्रेट दैट दैट इज द टाइटल ऑफ द सॉन्ग मितवा, जो कि हमेशा हमें याद रहेगा. देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स विच has that word, right? Or unmein se ek aur gana which has that word and it is from the film Lagaan, jiska gana main aapko lagaun aapke liye, kyunki see 25 years that they have completed, it is a landmark indeed, and why not celebrate by playing this next track, A.R. Rahman ki composition. Aur haal hi mein inka na ek एक इनकी ना एक सॉर्ट ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुड आई से, और इंटरव्यू विद आमिर खान एंड ए आर रहमान एंड ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, एंड ऑल ऑफ देम केम टुगेदर टू सेलिब्रेट 25 इयर्स ऑफ लगान एंड द म्यूजिक ऑफ लगान एंड हाउ दे मेड ऑल दीज सॉन्ग्स, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज. वेल, हम भी आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज लेके आए, लेकिन मुझे अभी भी याद आया कि मैंने तो ग्रीट किया ही नहीं यार आप लोगों को. तो हेलो, नमस्कार, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

दिस इज गपशप गली विथ मी टू. और कुछ ऐसा ही सिलसिला शुरू हुआ है कि ये मितवा, इस तरह के वर्ड्स ना हम डे टू डे अपनी लैंग्वेज में यूज नहीं करते. दे आर मोर पोएटिक, दे आर मोर सिनेमैटिक वर्ड्स, सो टू से, टू एड इमोशन टू आर मेलोडीज, राइट? जैसे कि मितवा हुआ, जैसे कि हम सफर हुआ, जैसे कि सजनी हुआ, जैसे कि रांझना हुआ. बहुत सारे ऐसे गाने आपको याद आएंगे जो आप, ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें जो आप यूजुअली यूज नहीं करते हो. ये बस लिमिटेड है हमारे बॉलीवुड स्पेस के लिए.

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Tune sunte hi brand click kar gaya na. Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
3: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
4: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. लॉसिन ट्रैवल. फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस. लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री. कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
5: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस.
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
7: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर. उमर ख्वाजा.
6: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
8: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
9: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
10: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
10: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
10: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
11: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
12: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो.
13: वेलकम बैक, यू आर ट्यून्ड इनटू फनीजिया रेडियो 104.9 FM. ये आपकी चॉइस है, इसीलिए दोबारा रिपीट करने की तो कोई बनती नहीं है, लेकिन प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम एंड यू शुड बी एज वेल. एंड दिस इज गपशप गली विथ मीठू, जहां पे हमारी बहुत सारी जो बातें होती हैं उन बातों का हिस्सा बनने के लिए ना एक सीधा सा नंबर है 972-235-5555. वंस अगेन, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी. मैं हूं मीठू.

लिसन लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट क्यूट सॉन्ग, इफ यू एंजॉयड इट जस्ट याद रखिएगा कि टाइटल है इशारे, एंड आई शुड बी एबल टू प्ले इट फॉर यू व्हेन एवर यू वांट टू लिसन टू इट. वंस अगेन इशारे, और मेरे इशारे आप समझ रहे हो ना कि बेसिकली लाइंस खुले हैं कि अगर कोई भी गाना आपको रिक्वेस्ट करना है तो आप जरूर करें. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. यहाँ पे हमारी ना बातें चलेंगी ट्रैफिक की जोन में. ट्रैफिक के जोन में यानी कि अगर आपके कुछ यू नो ट्रैफिक जाम देख रहे हो आप ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि व्हाट आई नो ऑफ ट्रैफिक राइट नाउ इज 35 ईस्ट पे रेसवे और हैरी हाइंस नॉर्थ बाउंड जो आपका जो रास्ता है दैट एग्जिट दैट पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट, वहाँ पे राइट शोल्डर और राइट मोस्ट लेन जो हैं वो बंद हैं. सो देर इज़ अ माइनर ट्रैफिक इंसिडेंट गोइंग ऑन देर, एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू लेट यू ऑल नो अबाउट. इफ देर इज़ एनी अदर अपडेट दैट यू हैव फॉर मी, प्लीज़ कॉल मी एट 972-235-5555. दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाई अटर्नी ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम. ज़रूर इनके साथ कनेक्ट करें, क्योंकि अगर कोई भी अगर एक्सीडेंट में यू नो कार एक्सीडेंट में या स्लिप एंड फॉल केस हो या वर्क प्लेस इंजरी हो, ऐसा कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो जहाँ पर आपको लगता है कि आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन कौन गुजरे उस स्ट्रेस से. देर इज़ सो मच बैक एंड फोर्थ दैट यू हैव टू गो थ्रू दैट यू गिव अप समटाइम्स, एंड दैट इज़ वॉट वी डोंट वॉन्ट यू टू डू. क्योंकि अटर्नी ओमर ख्वाजा ये प्रॉमिस करते हैं कि आप तब तक पे नहीं करते हैं उनको जब तक आप अपना केस जीत नहीं जाते हैं. एंड इफ़ यू गो थ्रू देयर रिव्यूज एंड ऑल ऑफ दैट यू विल नो कि द रिजल्ट हैज़ बीन पॉजिटिवली पॉजिटिव. और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो फ्री कंसल्टेशन का जो मौका है वो बिल्कुल आप ना गंवाएं. 4693005046 इज दैट नंबर टू कॉल मिस्टर अटर्नी ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम, एंड द वेबसाइट इज attorneyomar.com. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन दिस नेक्स्ट ट्रैक सुधा की रिक्वेस्ट पे.

ये वेदर की भाषा ना कभी नहीं समझ आती है मुझे, क्योंकि कभी कल तो मतलब शोला और माशा, वो जो कहते हैं ना कि एक ही हफ्ते में हमें नसीब हो जाता है यहाँ डैलस में रहते हैं। और आज का वेदर कुछ बताने वाली हूँ। बिफोर आई टेक यू टू गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर में शूट किया गया ये गाना, अगला जो लकी की रिक्वेस्ट पे मैं प्ले करने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले वेदर अपडेट आप लोगों के लिए राइट हियर ऑन गपशप गली विथ मी टू। आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आज हमारा हीट इंडेक्स जो है कुछ लोअर हंड्रेड्स में रहने वाला है इन DFW एरिया, लेकिन अगर आज का आपको खराब लग रहा है तो कल का सुन लीजिए, तो आज का दिन आपको बहुत ज्यादा बेटर लगने लगेगा, क्योंकि कल का हीट इंडेक्स हमारा कुछ 110 डिग्रीज तक हो सकता है। एंड अ हीट एडवाइजरी इज इन इफेक्ट फॉर नॉर्थ टेक्सस इंक्लूडिंग डैलस एंड फोर्ट वर्थ, जो दोपहर 12 बजे से लेकर कल 9 PM तक रहने वाला है। तो कि जितने भी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, ऑटोमेटिकली यू नो कि क्या करना है आपको। बाकी रही बात फीफा मैच की और फीफा अपडेट की, वो तो अगले उस सेगमेंट में हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन येस, द फीफा गेम दैट इज़ टू हैपन टुडे एट डैलस स्टेडियम, इंग्लैंड वर्सेज क्रोएशिया, उसके लिए पूरे प्रिकॉशंस लें। इफ़ यू आर गेटिंग रेडी एंड एक्साइटेड फॉर इट, बी एक्साइटेड, लेकिन पानी और वो कैप और सनस्क्रीन सारा कुछ अच्छे से पैक करके लेकर जाएं अपने साथ, ठीक है। फिलहाल ये भी बता देते हैं आज का हाई कुछ 93, दैट इज द हीट इंडेक्स विल मेक यू फील इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 डिग्रीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स गोइंग टू स्टे मोस्टली सनी, ब्रीजी, हॉट एंड ह्यूमिड। लेडीज एंड जेंटलमैन, विंडी रहेगा, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। आज का लो कुछ 77, कल का हाई कुछ 98 के पास, बट देन द हीट इंडेक्स कम्स इन टू एक्शन टू मेक इट फील एज दो इट इज 110। कल भी थोड़ा विंडी रहेगा और ये है हमारा वेदर का हाल। चलें आप कश्मीर विथ लकीज रिक्वेस्ट राइट हियर।

0: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
1: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध। The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
3: I've been researching retirement planning.
4: Oh, really? Where?
3: Google, YouTube, a guy on TikTok.
4: Or you could just talk to WealthActive.
3: What's the difference?
4: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
2: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम। 9191 काइज़रवे, सुइट 205, फ्रिस्को।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं। Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: नए दोस्त मजेदार लगते हैं, क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती।
2: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपर हिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदना।
12: गेट रेडी एज द परफेक्ट कॉकटेल मिक्सचर विद कॉकटेल 2, रिलीजिंग ऑन द 19th of June एट थिएटर नियर यू।

Well, you are tuned into Fanisha Radio 104.9 FM और इस वक्त हम आपके लिए लेकर आते हैं FIFA अपडेट्स और ये है गपशप गली विथ मीटू और मैं यहाँ पे उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फीवर में डूब चुके हैं तो इस सेगमेंट को भी डूब के सुने बिकॉज इंटरेस्टिंग स्टफ फॉर ऑल ऑफ यू अपडेट फ्रॉम yesterday फॉर ऑल ऑफ यू और शाहिना की तरफ से एक बहुत ही शानदार मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली कॉलीग्स और सबको बहुत सारा प्यार आप देते चलें एंड यू नीड टू फाइंड टाइम फॉर योर लव्ड वंस मेक श्योर यू टेल देम एम्पल दैट यू लव देम शाहिना की तरफ से ये खूबसूरत सा मैसेज आप सभी के लिए और ये खूबसूरत सा गाना दिस इज गपशप गली विद मी टू

दुनिया थोड़ी सी और हसीन हो रही है फीफा वर्ल्ड कप 2026 के कारण। और कल तो ओहो लियोनेल मेसी ने अल्जीरिया के अगेंस्ट हैट्रिक जो मारा है ना, अर्जेंटीना को 3-0 से जो जिताया है ना, वो अपने आप में एक किस्सा बन गया है, एक मेमोरेबल डे नॉट जस्ट फॉर अर्जेंटीना एंड ऑफकोर्स मेसी, लेकिन हम सब के लिए। एट 38 ईयर्स ओल्ड द माइस्ट्रो ब्रोक अ मैसिव क्लस्टर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इट वॉज इन कैंसर सिटी लास्ट नाइट, जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ। हमारा फीफा अपडेट जो इस सेगमेंट में आता है, आई हैड टू स्टार्ट इट विद मेसी, राइट? मेसी हैज ऑफिशियली टाइड मिरोस्लाव क्लोज़ेस लेजेंडरी रिकॉर्ड ऑफ 16 मेंस वर्ल्ड कप गोल्स। सबसे क्रेजी बात यह भी है कि 38 की एज में ही इज नाउ द ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर ए वर्ल्ड कप हैट्रिक। कैन यू बिलीव दैट? और इसीलिए जो वो आंखों से आंसू उनके निकले थे ना, इट वॉज फॉर अ जेन्युइन रीजन, क्योंकि ही हैज हैड सम डिफिकल्ट टाइम बिफोर दिस गेम and therefore those tears that you see in his eyes when he hit that hat trick there. Aur 6 world cups ki agar baat kare yahan par to ji haan, yesterday he became the first player in history to step onto the pitch in 6 different men's world cups. Unki ye journey ye started kuch 20 years back in 2006 as an 18 year old substitute in the game. Can you imagine? Wahan se yahan tak ka safar unka kafi amazing raha hai. And of course this historic match yesterday was his 27th career world cup appearance, and as heard from sources, Inter Miami ka ye star jo hai, he's playing his last and probably the most memorable World Cup ever that he is going to be part of. And that's Lionel Messi, ladies and gentlemen. All sports fans are truly lucky that we all are witnessing this legend playing in action in this 2026 World Cup that is ongoing. And Messi, क्या लीड कर पाएंगे अर्जेंटीना को उस ट्रॉफी तक फिर एक बार, ये तो हम महीने भर में हमें पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल लेट्स गो स्ट्रेट टू द म्यूजिक, और ये है द नेशनल एंथम फॉर यू नो फीफा 2026। इट्स डाई डाई बाय शकीरा एंड दिस रिक्वेस्ट केम फ्रॉम रूबीना।

Argentina's Messi created a record, and just not one record, many, many records that he has created yesterday. And Argentina ke saath jo agla match Austria ka hone wala hai, wo hone wala hai Dallas Stadium mein, ladies and gentlemen. Lot of excitement for that. It is on June 22nd, and we will be looking forward for Messi to step into Dallas soils, and it will be so very exciting. आज भी एक एक्साइटिंग मैच है, एक पावरफुल ग्रुप स्टेज क्लैश जो कि डैलस स्टेडियम में होने वाला है, और ये जो है काफ़ी हाई एनर्जी हाई स्टेक मैच होने वाला है, एज बोथ टीम्स बैटल फॉर क्रूशियल ग्रुप पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ अ ग्लोबल ऑडियंस. ए मार्की इंटरनेशनल शो डाउन ऑन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फुटबॉल स्टेज. इट्स फीफा वर्ल्ड कप 2026 दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस सेगमेंट. लेकिन यू नो वाट, आई एम थिंकिंग कि हम ना ये सेगमेंट अब मूव करेंगे 12 to 12:30 के दरमियान tomorrow onwards, because we have so many updates to give you. There is so much excitement in the air. This definitely deserves more than 15 minutes of our airtime, right? So, isliye ab se 12 se 12:30 ke beech mein FIFA updates aap logo ke liye, and इस टाइम में म्यूजिक के साथ साथ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों के लिए चलती रहेंगी. दिस एनोनिमस स्कॉलर हु सेंड दिस रिक्वेस्ट, रिकी मार्टिन्स, दिस एनर्जेटिक सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू, इट्स मारिया.

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
3: अरे कहना क्या चाहते हो?
4: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
5: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
6: Excuse me. It's called being loyal.
5: It's called being predictable.
6: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
5: And what's so special at Neon Cactus?
6: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
5: Not bad.
6: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
5: Okay, this I didn't expect from you.
6: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं।
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
13: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
14: वेट, इतना सब और प्राइस?
13: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
15: मैं हीरो।
16: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
17: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
18: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
17: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
19: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.

everything more that you get on Funnation Radio 104.9 FM और गपशप गली में ये वक्त और अगला सेगमेंट जो हमारा होता है ये हमारा होता है थोड़ा इंटरैक्टिव सेगमेंट जहाँ पर कुछ सवाल रखते हैं जिसका ना सही ना गलत जवाब होता है बस कुछ इंटरैक्शन चाहिए होता है आपकी इनपुट चाहिए होती है बस यही मध्य नजर रखते हुए लेट्स गेट इन टू दिस जोन जहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी मूवीज और सीरीज जो हैं वो मैंने देखी है उसके बारे में भी लगे हाथ साथ ही साथ बात करती रहूंगी. दिस इज गपशप गली विथ मी टू और ये अगला गाना दैट आई एम गोना प्ले फॉर ऑल ऑफ यू इट फीचर्स ऑल्सो अरशद वारसी एंड ऑफ कोर्स कैलाश खेर इन दिस वन. तो ये गाना शुरू करते हैं क्योंकि अरशद वारसी की एक फिल्म आ रही है विच आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट.

जी हाँ, आई हैव स्माइल्ड जस्ट बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ सॉन्ग वॉज रिटन एंड संग एंड कैलाश खेर एट द हेल्म ऑफ इट. लिरिक्स लिखे हैं विशाल दादलानी ने, बाय द वे, जस्ट FYI, लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द विशाल शेखर डुओ, और उन्होंने ही कॉम्पोज किया है ये गाना. सो यस, अरशद वारसी इन दिस गाना, और अरशद वारसी ऑन स्क्रीन दैट वी आर गोइंग टू सी, स्मॉल स्क्रीन एंड बिग स्क्रीन. बहुत सारे इनके रिलीजेज आ रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि अरशद वारसी आई हैव ऑलवेज फाउंड हिम वेरी वेरी गुड एक्टर, और इसीलिए काम मिल रहा है, ये कितनी अच्छी बात है. गुड एक्टर्स आर बैक इन एक्शन. सो यस, राजकुमार हिरानी की ये फिल्म है जिसका नाम है प्रीतम और पेड्रो, जो कि July 3rd को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है. और आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि ये फिल्म जो है इट इज ए साइबर क्राइम मिस्ट्री एंड ऑल ऑफ केओस दैट इज गोइंग टू अनफोल्ड. और इसमें ना सिर्फ अरशद वारसी हैं बट विक्रांत वासी, बमन ईरानी एंड मोना सिंह एज वेल. अ ग्रेट स्टार कास्ट इन दिस वन. एंड राजकुमार सफोरे इन टू द वर्ल्ड ऑफ स्ट्रीमिंग विथ प्रीतम और पेड्रो, ये मजा आएगा देखने में. एक ऐसी कहानी जो कि कोविड के टाइम पे उन्होंने लिखी थी, उनको फ्रॉम द साइबर सेल, मुंबई साइबर सेल, उनको एक जो है कॉल मिला था वहाँ के हेड से, हेड ऑफ द मुंबई साइबर सेल, और उन्होंने कहा था कि साइबर क्राइम पे कोई फिल्म बनाई जाए, क्योंकि इस पे ऐसी कोई फिल्म बनती नहीं है, लोगों को पता नहीं चलता है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द स्टोरीज बी टोल्ड. तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को

मिस्टर अमित दुबे जो हैं, जो कि पायनियर हैं और एंड ट्रस्टेड एक्सपर्ट इन कॉरपोरेट साइबर सिक्योरिटी, अब उन्होंने एक किताब दी जो बहुत सारी कहानियां थी इसमें अबाउट दो साइबर क्राइम्स, और वहां से एक कहानी उन्हें काफ़ी इम्प्रेस कर गई और उसी को उन्होंने अपने अंदाज में अपना एक नया उसको एक फ्लेवर दे के, एक नया ट्विस्ट एंड टर्न दे के, एक अपनी ही एक अलग कहानी बनाई. एंड दैट इज़ वॉट इज़ प्रीतम और पेड्रो. और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. डायरेक्टेड बाय अविनाश अरुण, प्रोड्यूस बाय राजकुमार हिरानी. लेडीज एंड जेंटलमैन, सो दैट्स कमिंग अप. एंड ऑफकोर्स अल्फा, जिसका ट्रेलर आज ही रिलीज हुआ है, विथ लॉट्स ऑफ पीपल स्पेक्यूलेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स. वेल, आई लाइक द ट्रेलर, क्योंकि ये एक फीमेल लेड जो एक स्पाई ड्रामा होने वाला है इन द YRF यूनिवर्स दैट हैज़ बीन एक्सपेंडेड. मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, होपफुली आपको भी है. एंड इस टीजर का मैं जो कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी ट्रेलर के नीचे, जो लिखा हुआ था, यार पीपल आर सो जजमेंटल, माय गुडनेस. मुझे लगा कि यार आलिया भट्ट वाज लुकिंग फैब एंड शर्वरी अलोंग विथ हर वाज लुकिंग एब्सोल्युटली फैब एज वेल. और फिर ऋतिक रोशन की वो आंखें, ओहो हो, दैट टेल्स अस दैट देयर इज अ कैमियो और मे बी ए लिटिल बिट ऑफ रोल इन द फिल्म विच इज़ अल्फा, जो रिलीज होने वाली है कब. ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं अभी राइट नाउ आई एम ड्रॉइंग अ ब्लैंक कि कब रिलीज होने वाली है यार ये फिल्म. इज इट July 19th, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. हाँ, ओके. इन द मीन टाइम लेट्स लिसन टू पटाखा गुड्डी फीचरिंग आलिया भट्ट.

कुछ हमारी बातों में जो शामिल होने वाली हैं आपके कुछ इनपुट्स, वो स्टार्ट करें उसके पहले ना कुछ एक ऐसी ज़रूरी बात जो हर किसी के कॉन्वर्सेशन में शामिल होता है दीज डेज. इफ़ यू आर ऑन H-1B, F-1, L-1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एंड प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेसिडेंसी, आपके लिए लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं. अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम ये स्पेशलाइज करते हैं एक्सक्लूसिवली इमिग्रेशन लॉ में, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीजाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजाज एंड परम लेबर सर्टिफिकेशन एंड ऑल्सो US सिटीजनशिप. तो अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो इस बारे में या EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम के बारे में, आप जरूर इन्हें ईमेल करें. info@seemamehtalawfirm.com is their address, and also do remember to check out their website. Seema Mehta Law Offices is the name to remember. Once again, thank you for tuning in to Fun Asia Radio 104.9 FM. Gapshap Gali mein meri aaj baatcheet hone wali hai hamare aadat ke baare mein jo mere khayal se kabhi na kabhi hum sabhi usme trap hue hain. And ye idea hai ye baatcheet karne ka, ye maine socha ki main apna thoda sa guilt hataun, kyunki abhi main ghar pe apne kuch dekh rahi thi. There was so much of clutter I was seeing around कि जो मुझे लग रहा था कि मैंने क्यों ही ये चीज़ ली है. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जैसे कि मेरे पास एक हनी डिपर है तो मैंने सोचा कि भाई मैंने ये लिया क्यों. मैंने ये लिया इसीलिए था तब क्योंकि मुझे कुछ पिक्चर्स दिखी थी जिसमें एक वो हनी का जार है और उसमें वो जो वो हनी डिपर जो होता है वो इतना खूबसूरत लगता है कि मुझे लगा था कि मैं भी ना ऐसे ही बिल्कुल पिक्चरिस्क वे में हनी निकालूंगी एंड वो जो ड्रिप होगा मेरे ब्रेड पर या other things that I'll be using it for, वो कितना खूबसूरत लगेगा. But अगर मैंने एक या दो बार से ज़्यादा उसको यूज़ किया हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है ना. ऐसी कई चीज़ें हैं और इस ट्रैप में हम सब पढ़ते हैं, चाहे वो जेंजी हो, चाहे वो मिलेनियल हो, चाहे वो जेन एक्स हो या उसके पहले. यू नो एवरीबडी हैज़ फॉलन ट्रैप टू दैट कि हम बेवजह कोई चीज़ खरीद लेते हैं जस्ट बिकॉज इट इज़ ऑल अराउंड अस, या हमें वो चीज़ खूबसूरत लगी या कि लगी कि भाई ये तो हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, अगर होगा ना तो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे. प्लीज़ टेल मी योर ट्रेडमिल स्टोरीज ऑल्सो, बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम सो मेनी फ्रेंड्स कि भाई ले तो लिया, ऐसा लगा कि भाई रोज़ ही एक्सरसाइज करने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो मुझे बताइएगा जरूर कि भाई आपने ऐसी कौन सी चीज अपने घर में जमा कर ली है जो आपको लगा कि बहुत यूजफुल होगा बट इट इज एब्सोल्युटली ए यूजलेस थिंग. और आंखों का जो है ना, आंखों का क्या बोलना चाहिए, आंखों का आई सोर जो कहते हैं ना, आंखों का क्या कहना चाहिए, व्हाट इज दैट वर्ड कॉल्ड, आंखों का कीड़ा तो नहीं बोल सकते राइट, आंखों का यार सैंड को क्या बोलते हैं, वही हाँ वो किरकिरी, हाँ किरकिरी आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू कैन कॉल इट. सो टेल मी इफ देर इज समथिंग इन योर होम दैट इज योर आंखों की किरकिरी, ठीक है. 9722355555 दिस इज फॉर नियॉन कैक्टस लेडीज एंड जेंटलमैन दैट यू आर गोइंग टू आंसर फॉर. $20 का जो गिव अवे है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा अगर आपका जवाब हमें फनी लगा, वियर्ड लगा, क्रेजी लगा, मजेदार लगा.

0: All right, ladies and gentlemen, before we slip into that next track, एक interesting call आया है मेरे पास. मैंने कहा ना कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हमें लगता है उस वक्त कि बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए और हम खरीद बैठते हैं and then we regret. तो एक caller जिनका बड़ा interesting जवाब था, मुझे लगा मैं इनका लेती हूँ ऑन एयर. सो यस, प्लीज़ टेल अस कि क्या वो चीज़ है जो आप खरीदते हो और देन यू रिग्रेट ऑन दैट. और ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब मुझे मिला. लेट्स लिसन टू इट. सर, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाँ, तो मैं जो बता रहा था कि आप लोगों का शायद वन टाइम का रिग्रेट होता होगा, मेरा हर बाई वीकली चलता है. एवोकाडो लेके आया, उसको देखा, पकने के बाद खाऊंगा.
0: हाँ,
1: पकने से मतलब पका, खराब हो गया, एक दिया. अगले वीक फिर मैं सोचूंगा कि हाँ, फिर मैं एवोकाडो लाऊंगा, पकेगा, काटूंगा, खाऊंगा, लेकिन फिर वो खराब होता है. ये साइकिल चला आ रहा है, 2-3 साल तो आराम से हो चुके हैं.
0: अगर सोचने पे न्यूट्रिशन मिल जाता तो क्या ही बात थी. आपको, आपका इंटेंशन बहुत साफ है, दैट आई कैन सी. बट एंड हमारी तरफ से ना ये एक खास आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा. आप गुआकामोले के लिए डिमांड करें एंड दे विल सर्व यू. एंड दैट्स एट नियॉन कैक्टस. यू हैव जस्ट वन फॉर योरसेल्फ फ्रॉम नियॉन कैक्टस. दिस मेक्सिकन फ्यूजन मीट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस. और आपसे बेहतर आज इस इनाम का हकदार कोई नहीं है. सो प्लीज होल्ड द लाइन फॉर मी. I'll definitely take all your details. And it is that one thing in our lives that is absolutely redundant. लेकिन हम फिर भी खरीदते हैं यार. This is Gupshup Gali with me too. मैं उनके सारे details लेकर वापस आती हूँ. Don't forget कि you can go to Neon Cactus. और यहाँ पे मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप लोगों के लिए हैप्पी आवर है. रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स मिलेंगे आपको, क्यूरेटेड कॉकटेल्स भी हैं. Young, colorful, modern, full of energy, that vibe that you're going to get there.

0: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services. The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
0: That magic removal ho, love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
1: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
2: Samasya ka pakka samadhan.
1: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
3: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
4: हाँ.
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ.
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ.
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
5: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
6: भूख लगी
7: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
5: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
0: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 McKinney.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
11: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
10: सच में सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

ये गाना, इस गाने को याद रखें क्योंकि इस पर ही बेस्ड कहना चाहिए, या तो इंस्पिरेशन जो कि लिया होगा म्यूजिक कंपोजर ने, एंड इट इज़ प्रीतम आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी, बेशरम का ये गाना था. एंड इट साउंड सो मच लाइक दिस अदर सॉन्ग दैट आई एम गोना प्ले फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज़ फ्रॉम आवारापन, लेडीज एंड जेंटलमैन. और ये गाना भी प्रीतम की कॉम्पोजिशन ही थी, तो अपने ही गाने से इंस्पिरेशन लेना कोई गलत बात नहीं है. लेकिन इस गाने ने भी किसी और गाने से इंस्पिरेशन लिया ऐसा हमें लगता है. That is what I'm going to bring for you right now. लेकिन you know, आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप you know, घर खरीदने का सोच रहे हैं, बेचने का सोच रहे हैं, या रीलोकेट कर रहे हैं DFW एरिया से, तो नवनीता का नाम याद रखें. नवनीता का नाम वैसे कौन नहीं जानता है, जो भी फर्नीचर रेडियो सुनते हैं हर कोई नवनीता को जानते हैं. और नवनीता खेमका विथ केलर विलियम्स रियल्टी, शी विल हेल्प यू यू नो एवरी स्टेप ऑफ योर वे. क्योंकि नवनीता अंडरस्टैंड करती हैं, समझती हैं दैट बाइंग अ हाउस इज़न्ट जस्ट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अ पाइल ऑफ पेपर वर्क, क्योंकि हर घर की अपनी एक अलग कहानी होती है. और नवनीता आपको आपकी वही परफेक्ट स्टोरी क्रिएट करने में आपकी पूरी तरह से मदद करेंगी. वेदर यू आर ए फर्स्ट टाइम होम बायर ट्राइंग टू फिगर आउट मॉर्गेजेस और लुकिंग टू सेल योर प्रॉपर्टी फॉर टॉप डॉलर, शी मेक्स द एंटायर प्रोसेस इनक्रेडिबली स्मूथ फॉर ऑल ऑफ यू. नवनीता को सब जानते हैं. अब नवनीता का ये साइड भी आप जान लीजिए. ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो, जेन्युइन केयर हो, या पर्सनलाइज्ड सर्विस के लिए बिल्कुल नवनीता के पास जाएं. और शी इज शी बी हैप्पी टू हेल्प यू. 347-449-4242. शी इज विथ केलर विलियम्स रियल्टी. लेट्स डाइव इनटू दिस नेक्स्ट ट्रैक राइट हियर. आई एम गपशप गली विथ मी टू.

You are listening to Phanisha Radio 104.9 FM. This is Gapshap Gali with me too. और यहाँ पे मैं आपके साथ ना कुछ शेयर करना चाहती हूँ. And it is to do with this legal firm जहाँ पर आपको आपकी पूरी मदद मिल सकती है. It is Seema Mehta Law Offices that I have spoken about. Somebody was asking for the email address. I thought I'll share it with everybody once again. चाहे वो आपका non-immigrant visa हो या अगर आप US permanent residency के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप H-1B, F-1, L-1 या कोई भी non-immigrant visa पे हैं, तो आपके लिए ये रास्ता बिल्कुल clear है. And that is attorney Seema Mehta का रास्ता. And she is going to help you with everything that you need help with. The law offices of Seema Mehta and info@seemamehtalawfirm.com is the website. और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ना, क्योंकि legal health के बारे में तो आपने बता दिया, क्योंकि so much of stress is associated with it, लेकिन health से related बात भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं आप healthy, wealthy and wise रहें. तो इसी से जुड़ी कुछ हम आपके साथ जो information share करते रहते हैं. फिलहाल health के बारे में बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर जो कितने सालों से आपकी मदद करते आए हैं, नाउ दे हैव दिस प्लेस फॉर ऑल ऑफ यू जहाँ पर आपके लिए जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो 5 या 10 मिनट की नहीं होती है, वो अच्छा खासा आपको टाइम देते हैं डॉक्टर्स, सो दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट योर प्रॉब्लम इज, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. दे आर रेडी टू लिसन टू यू, एंड बींग अ लिसनर इज आई फील द नंबर वन थिंग for any healthcare provider society. If we talk about wahan pe mujhe chahiye ki mujhe mere doctors, mere nurse mujhe sune, meri problem ko samjhe, and ye ek khaas baat hai passion health primary care ki that you all must be aware of. Aur yahi nahi, saath mein aapko main ye bhi batana chahti hu, they are hiring experienced primary care doctors, endocrinologists, pediatricians, psychiatrists, full-time and part-time opportunities हैं आप लोगों के पास. अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने resume passionhealthphysicians@gmail.com पे भेज सकते हैं. Text 217-454-4639 for more information. And as for everybody else, passionhealthphysicians.com is the website, and you can text at 214-666-6259. Passion Health Primary Care. Your health is their passion. Do remember that. Achha, ek sawal aap logon ke liye aa raha hai right after this song. And...

0: एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, एक सवाल के बारे में पूछ बताने वाली थी ना, वो सवाल पूछने के पहले, सवाल समथिंग दैट यू शुड थिंक अबाउट, नॉट नेसेसरिली आई एम लुकिंग फॉर आंसर्स हियर, लेकिन हाँ कॉल करके बताएंगे तो और भी मज़ा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि कॉन्वर्सेशन तो भाई दो तरफा ही होना चाहिए, लेकिन क्या है ना कि हम लोग वो जो अंदर वाली जो कॉन्वर्सेशन है उसको आप बिल्कुल ऑन रखें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप टॉकिंग टू योर सेल्फ, नॉट लिटरली, लेकिन वो जो इंट्रोस्पेक्शन की बात होती है ना, वो जगाना चाहती हूँ आप लोगों के, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन की एक्चुअली यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कॉन्वर्सेशन with yourself asking कि भाई आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि नहीं. Well, मैं आई एम गोइंग इन सर्कल्स राइट, आई विल गेट टू द पॉइंट इन जस्ट अ बिट, लेकिन उसके पहले ये जो अगला गाना लगाने वाली हूँ ना, कुछ 7 घंटे पहले ही रिलीज हुआ है, एंड इट इज बंधु 2.0 फ्रॉम कॉकटेल 2. यस, तुम ही वो बंधु, कॉकटेल में हमने सुना और गाना कितना मशहूर हुआ यार, कविता सेठ का, और उसके बाद अब बंधु 2.0 आया है, और जिस तरह से इस गाने को इंट्रोड्यूस किया गया है ना, मज़ा आ गया. आप जरा सुने दिस कॉन्वर्सेशन बिटवीन शाहिद कपूर, प्रीति सैनन एंड रश्मिका मंदाना, एंड गेट टू द एंटायर सॉन्ग इन ए बिट. ठीक है, वो गाना भी पूरा सुनते हैं और ये वार्तालाप भी. तो पहले तो आप सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं. एंड दिस फिल्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फनीशिया फिल्म्स, जून 19 यानी कि इसी फ्राइडे को रिलीज होने वाली है. इट हैज़ दैट ड्रामा, दैट रोमांस, दैट फ्रेंडशिप, एवरीथिंग गोइंग ऑन विद दिस ब्रांड न्यू लव स्टोरी दैट दे हैव कम, एंड अ ब्रांड न्यू हार्ट ब्रेक दैट यू आर गोइंग टू सी अमंग्स द थ्री. तो तैयार हो जाए इसके लिए. एंड दिस दिस लिटिल इंट्रोडक्शन टू द सॉन्ग आई लव्ड.
1: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग, ट्रोल.
2: But why it's iconic?
1: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, काहे को पंगा लेने का, छोड़ दे, आजकल जनता ना बहुत डेंजरस हो गई.
2: But imagine how the song would look if Ali, Kunal and Diya did it. Our version. That's what I'm saying, now you're getting me.
1: You guys want to audition? Yeah? Troll ho jayenge. Mat karo.

कैसा लगा आप लोगों को गाना? मुझे पसंद आया यार. दिस इज बंधु 2.0 फ्रॉम कॉकटेल 2 एंड इट इज रिलीजिंग एट द थिएटर्स दिस फ्राइडे. और कृति सैनन और शाहिद कपूर तो भाई पहले भी काम कर चुके हैं एक साथ. तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया उसी का गाना लेकर आने वाली हूँ अब नेक्स्ट फॉर ऑल ऑफ यू. लेकिन यहाँ पे ना कुछ बात करने वाली हूँ ASMR के बारे में. किन किन को पता है सीरियसली बताएं ASMR इसके बारे में आपने कभी पहले सुना है? और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट स्ट्रेंज फीलिंग, दैट टिंगली वेव ऑफ रिलैक्सेशन जो आपके ब्रेन को नसीब होता है कुछ आवाज़ें सुनकर. कई बार कुछ कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो नेचर में पाई जाती हैं या जो क्रिएट की जाती हैं की जा सकती हैं. और दैट विस्परिंग साउंड ऑफ समथिंग दैट गिव्स दैट अल्टीमेट ब्लिस इन योर माइंड, दैट ब्रेन ब्रेन रिलैक्सेशन जो काफ़ी आजकल चर्चा में है ASMR. और ये क्या है? दिस इज ऑटोनोमस सेंसोरी मेरिडियन रिस्पॉन्स, जिसके बारे में थोड़ा सा आप पता करने की कोशिश करें क्योंकि हम जानते हैं कि जेन जी एंड मिलेनियल्स इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं और जो नहीं जानते वो अब जान जाएंगे. इट इज़ एक्चुअली डिफाइंड एज ए सुपर क्रिस्प साउंड ऑफ फिंगर्स जेंटली टैपिंग ऑन अ वुडन सर्फेस लेट्स से, फॉलोड बाय ए सॉफ्ट क्लोज अप विस्पर. अगर आपको वो सुनाई देता है ऐसे, अगर ASMR करके अगर आप YouTube पे भी ढूंढने जाएंगे ना, आपको ऐसी बहुत सारी बहुत रिलैक्सिंग साउंड्स, ऐसी जेंटल बात करना ज़रूरी है यहाँ पे इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट जेंटल साउंड्स, राइट? तो हाँ, कहाँ थी मैं? हाँ, मैं ये कह रही थी कि आप ज़रूर जाके करें चेकआउट. और ये एक दिमाग का मसाज है ऑफ सॉर्ट्स विच इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प योर ब्रेन रिलैक्स. ये एन्जाइटी जिनको होती है उनके लिए भी अच्छा है. ये एक साउंड थेरेपी की तरह इंटरनेट यूज़ करने लगा है. और जिनको नींद नहीं आती, जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी कमाल की चीज़ है ASMR, लेडीज एंड जेंटलमैन. मैंने कहा ना कि अगर पहले आपने कभी नहीं सुना था तो अब आपने सुन लिया, जान लिया. समझने के लिए यू हैव टू चेक इट आउट.

अक्सर कहा है मैंने ये और आज फिर एक बार दोहराना चाहती हूँ, आई फील प्रीतम्स बेस्ट एल्बम, और थोड़ा सेफ प्ले करने के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स दैट ही हैज़ कंपोज्ड फॉर अ फिल्म, इट इज़ फॉर लाइफ इन अ मेट्रो. एंड ये गाना मुझे पर्टिकुलरली बहुत पसंद है. एक्चुअली सारे गाने इस फिल्म के बहुत पसंद है, एक्चुअली प्रीतम के गाने हमें बहुत पसंद है, इसीलिए पिछले 30 साल से ही रेलिवेंट. और ये जो है क्राउन जाना चाहिए प्रीतम को. आप कितना भी प्लेजरिज्म और कितना भी कंट्रोवर्सी, अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी उनकी चली थी एक गाने के साथ रिलेटेड, जो कि एक 90s के इटालियन ट्रैक पर लोगों को लगा कि देर इज़ अ लॉट ऑफ रिजेम्बलेंस विद द सॉन्ग दैट वॉज इन क्वेश्चन. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने भी ऐसे प्लेजरिज्म वाली चीज़ें या कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट कर लो, द फैक्ट दैट ही इज़ ए ग्रेट कॉम्पोजर कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम. And he has been relevant for the past 30 years is the endorsement that is very much loud and clear. और इसीलिए यहाँ पर ये काफ़ी ताज्जुब की बात है. और एक्चुअली मैं सरप्राइज नहीं हूँ, ये कहना चाहिए कि जब मुझे पता चलता है कि कुछ एक क्रिप्टिक मैसेज जो प्रीतम ने इंस्टाग्राम पे दिया है, एंड ही हैज़ इंडिकेटेड अ डिज़ायर टू लिव डिफरेंटली एंड एक्सप्लोर अनएक्सप्लोर्ड क्रिएटिव पाथ्स अवे फ्रॉम मेन स्ट्रीम बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, तो ये कोई सरप्राइज नहीं है. आप ट्रोल करते रहो बंदे को, बंदा भी कितना ले यार, उनका भी एक बर्न आउट आता है. एंड ऑफकोर्स प्रीतम हैज़ बीन कंपोजिंग वन आफ्टर द अदर हिट्स दैट ही हैज़ बीन गिविंग, ही इज़ स्टेड सुप्रीमली बिजी. तो मेरे ख्याल से ये उनके अपने लिए कुछ मल्टी ईयर का ब्रेक दैट ही हैज़ स्पोकन अबाउट इन दैट मैसेज, इट इज़ डेफिनेटली डूइंग गोइंग टू डू गुड फॉर हिम. कमर्शियल फिल्म म्यूजिक से वो मल्टी ईयर ब्रेक लेने का उन्होंने इंडिकेशन दिया है, एंड I will say good for him because that only says that he's going to keep making music, but maybe not in the commercial space, which is fine. We'll still will get amazing music that he wants to create. और ये जो है reflect करता है कुछ और similar shifts जो हमने industry में देखे हैं, including playback.

सिंगर अरिजीत सिंह, उनका डिसीजन टू स्टे अवे फ्रॉम न्यू फिल्म असाइनमेंट्स, ये सिमिलर पाथ पे प्रीतम जो नजर आ रहे हैं. ऑल राइट, कूडोज टू देम हु कैन टेक अ स्ट्रांग डिसीजन लाइक दिस, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो या आप हो. कूडोज टू यू यार इफ यू कैन डू दैट. एंड कूडोज टू पीपल हु आर लाउड एंड क्लियर अबाउट वॉट एवर दे थिंक एंड दे डोंट हेजिटेट टू से. उसमें एक नाम और आता है, वो है सोना महापात्रा का. लेट्स टेक यू टू अनदर जेम ऑफ अ आर्टिस्ट, एंड दैट्स सोना महापात्रा सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे.

Mona Mahapatra's birthday and we want to wish this fierce lady a very happy birthday. और इसीलिए एक और गाना play करना चाहती हूँ. Just because she is one of those जो अपना fight वो लगी हुई है अपने उस आवाज़ को दूर तक पहुँचाने में. Artist royalties की बात हो, gender equality की बात हो, या fair representation की बात हो, she is out there trailblazing figure that she is in the Indian entertainment ecosystem. मुझे लगता है इनका एक और गाना हमें सुनना ही चाहिए, which she lives by, बेखौफ जीने में ये यकीन रखती हैं. She and her husband Ram Sampath, the composer that we are talking about, और यहाँ पे उन दोनों के साथ में जो ये creation है, let's play it for you. This is Gupshup Gali with Me Too celebrating people here in this last segment.

More power to our birthday woman today. It's Sona Mahapatra, ladies and gentlemen. And if you were born on this day, 17th of June, to yakeenan aap kai popular logon ke saath birthday share karte, including, actors and of course singers. And, let's talk about few more sports people and many others actually for that matter. Yahan par main ek moment lena chahti hun, entertainment industry ke alawa, sports में जो बात करनी है वो है ऑफ कोर्स वीनस विलियम्स हु इज सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे टुडे एंड फ्रॉम रैपर केंड्रिक लमार टू अमृता राव दैट वी आर गोइंग टू टेक यू टुडे सो यस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेकर स्पोर्ट्स और दूसरी इंडस्ट्रीज तक आज का दिन बहुत ही कमाल का दिन रहा है और अगर आप भी अपना बर्थडे आज सेलिब्रेट करते हैं तो कमाल कमाल का कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी के लिए आपका रहा है बी नाइस बी गुड कीप स्माइलिंग एंड मेक श्योर कि आज हमारे बर्थडे पर्सनालिटीज़ को पूरी तरह से आप स्माइल करवाएं और अगर इसका मतलब होता है कि बर्थडे जो आज इनका है जो मुझे सुन रहे हैं अभी इस वक्त उनके साथ जो बैठे हुए हैं ना उनके लिए एक सजेशन है क्योंकि ऐसे स्पेशल डे पे स्पेशल जगह ले जानी चाहिए पीएमजे ज्वेल्स की बात करने वाली हूँ यहाँ पर और आपको बताना चाहती हूँ इट इज़ कमिंग टू फ्रिस्को ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप मतलब अगर स्टनिंग गोल्ड ज्वेलरी की बात हो या डायमंड ज्वेलरी की बात हो या ब्राइडल कलेक्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर तो आपके लिए ये जो सर्च है इट एंड्स एट पीएमजे ज्वेल्स डू रिमेंबर दैट आपके हर सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए और आपके माइलस्टोन डेज को और स्प्लेंडेड बनाने के लिए इट इज पीएमजे ज्वेल्स दैट यू मस्ट रिमेंबर द ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन स्टार्टिंग जून 20th और इसके चलते आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलने वाले हैं एक्साइटिंग festivities hai aur chance to win beautiful jewelry pieces ladies and gentlemen that you cannot miss out for anything in the world proudly associated with mahesh babu and sitara ghatta maneni PMJ is a name trusted by generations. Ye yaad rakhega, Main Street pe in Frisco. This is PMJ Jewels, ladies and gentlemen. Ab chale Amrita Rao pe aur unka special birthday celebration jo aaj chal raha hai, uska hissa bante with this next track right here for all of you on Funisha Radio. 104.9 FM, ye hai Gapshap Gali with me too.

0: ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, जाने से पहले आप लोगों को क्विक अपडेट देते चले. ट्रॉपिकल स्टॉर्म आर्थर हैज फॉर्म टुडे ऑफ द गल्फ कोस्ट ऑफ टेक्सास, बिकमिंग द फर्स्ट नेम्ड स्टॉर्म ऑफ द अटलांटिक हरिकेन सीजन. एंड द नेशनल हरिकेन सेंटर वॉन्ड द स्टॉर्म वुड कंटिन्यू टू ब्रिंग हैवी रेन एंड फ्लडिंग टू ए वास्ट स्ट्रेच ऑफ द साउथ ईस्टर्न यूएस फ्रॉम ह्यूस्टन टू अटलांटा. और एक एडवाइजरी जो फोरकास्टर्स ने भेजी है, विच इज ए लाइफ थ्रेटनिंग flooding conditions that can develop around that area. As for us here in Dallas Fort Worth, it is going to be mostly sunny, breezy, hot and humid today. 15 to 25 miles per hour ka jo wind gust hoga, that will help us actually in many ways. Aaj ka heat index close to 100 degrees, jo kal 110 degrees ho jayega. To heat advisory shuru ho chuka hai all the way till 9 p.m. tomorrow, ladies and gentlemen. And that's all the time I have. This is me too, signing off for the day.
1: शुभ दिन आ पहुंचा है, एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में. पीएमजे जूल्स.
2: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels, tradition crafted, style defined.
3: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
3: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
6: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
7: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
7: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
7: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
7: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
9: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
10: Calculating route. Rerouting.
9: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
10: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
9: क्यों?
10: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
9: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
10: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
1: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू. धुआं धुआं, क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
11: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
12: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
14: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
15: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
14: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
16: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
17: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
18: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts,
19: facts and circumstances. Call 214-378-8880. Matro Law Offices PC. Right advice, right defense.
20: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
21: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल. आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो और मैं हूँ आरजे सिमी विथ योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा. हर तरफ आजकल कॉकटेल 2 की ही बातें हो रही हैं. द मूवी इज रिलीजिंग ऑन 19th जून एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड. और आज का भी जो हमारा थीम है ना वो कॉकटेल 2 से ही इंस्पायर्ड है. हम आज बात करेंगे उन स्टोरीज के बारे में जो सीधी नहीं है, उसमें थोड़ा कुछ मिक्स है, वो बिल्कुल कॉकटेल है. वैसे आपकी कॉकटेल स्टोरी क्या है? क्या आपको कभी रिग्रेट होता है कि यार काश अपने क्रश को प्रपोज कर दिया होता, या फिर प्रपोज तो किया लेकिन सामने से जवाब आया कि हम दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं ना, या फिर कभी डेट पे गए और पता चला कि जो ऑफलाइन पर्सनालिटी जिससे कि आप पहली बार मिल रहे हैं उसकी ऑनलाइन पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट थी, या फिर आप कभी फ्रेंड जोन हो गए, या फिर आप और आपके फ्रेंड ने सेम पर्सन को पसंद किया, लाइक किया. आपका कॉकटेल स्टोरी क्या है हमें कॉल करके बताइए. और जिसकी स्टोरी मजेदार इंटरटेनिंग होगी उसको मिलेगा कॉकटेल 2 की फ्री मूवी टिकट्स एंड अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉकटेल ड्रिंक फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज. सो प्लीज कॉल अस एंड लेट अस नो एट 972-235-5555 पे. एंड टिल देन एंजॉय योर अमेजिंग कॉकटेल 2 का ये सॉन्ग द माशुका.

आई नो, दिल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि हम आज सेगमेंट जो आज का सेगमेंट है वो है कॉकटेल कन्फेशंस। और हमने अपने लिसनर से पूछा कि आपकी लाइफ की कॉकटेल कन्फेशन, कॉकटेल स्टोरी, माशुका स्टोरी क्या रही है, जहां आपको फील हुआ कि कभी लव ट्रायंगल में फंस गए, कभी गलत डेट पे चले गए, या फिर किसी को पसंद तो किया बट उसे बोल नहीं पाए, या फिर पता ही नहीं कि रिलेशनशिप के किस स्टेज पे है। आजकल तो एक और चीज फेमस है, विच इज सिचुएशनशिप। तो टॉकिंग स्टेज है, रोज बातें हो रही हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं हो रहा है, ऐसी भी चीजें हो रही हैं। और हमारे एक लिसनर्स ने हमें फोन किया और हमको बताया कि यू नो, प्रपोज तो किया लेकिन सामने से ना आया और फ्रेंड जोन हो गए। वैसे आपकी कॉकटेल स्टोरी क्या है, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एनोनिमस रहने वाला है, तो फील फ्री एंड शेयर योर हार्ट आउट। और अगर आपकी स्टोरी भी इंटरटेनिंग और मजेदार रही तो आप जीत सकते हैं कॉकटेल मूवी के फ्री टिकट्स अलॉन्ग विद अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉकटेल फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज। सो प्लीज कॉल अस एट 972-235-5555 पे।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
0: Desi Cravings सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
5: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
6: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
7: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
8: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम विद मी यानी कि आरजे सिमी ऑन द शो आफ्टरनून अड्डा। और इसके साथ हमने जो आज का सेगमेंट था द कॉकटेल कॉन्फेशंस उसको यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आई अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक जो है एक लिसनर ने बताया कि उनके फ्रेंड ने उनको इंट्रोड्यूस कराया टू द पर्सन दैट शी वॉज डेटिंग और दूसरे फ्रेंड ने आफ्टर फ्यू मंथ्स एक और इंट्रोड्यूस कराया अपने जो जिनको वो डेट कर रही थी एंड इट अपीयर्ड इट केम टू हर नॉलेज कि दोनों ही जो डेटिंग पर्सन जिनको वो डेट कर रहे थे दोनों ही दोस्त उनके वो सेम पर्सन निकले। मतलब वो बंदा चीट कर रहा था और फाइनली उसने एक थर्ड पर्सन से शादी की। तो वो बहुत खुश है कि उनकी दोनों दोस्त जो है वो बच गई हैं फ्रॉम दिस एंटायर सिचुएशन। और एक और लिसनर ने कॉल करके बताया कि वो लोग डेट पे गए थे और डेट हुआ ठीक हुआ बातें बातें हुई उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना वाना खाया और बाद में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सामने से कॉल आएगा और दोनों ही तरफ से बहुत दिनों तक कॉल नहीं आया और उनको लगा कि अच्छा शायद डेट अच्छी नहीं गई। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उनको कॉल आया और उन्होंने बताया कि अच्छा सब कैसा चल रहा है क्या हुआ मुझे लगा कि आप मुझे देख के डर गए आप इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते कैसा है सिचुएशन। लेकिन उनको पता चला कि अच्छा दोनों के दिमाग में सेम बातें चल रही थी। फाइनली दे आर टुगेदर टिल डेट सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर देम। और आयशा जी ने बताया कि आज उनकी सालगिरह है 11 साल उन्होंने अपने जो है मैरिड लाइफ हो गए हैं उनको सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आयशा एंड हस्बैंड आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बहुत सारे शुभकामनाएं। ये भी एक तरीके का लव स्टोरी ही है 11 साल का साथ कम नहीं होता। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और इस गिव अवे राउंड का जो मूवी टिकट जीता है वो जीता है निरंजन जी ने कांग्रेचुलेशंस। और आपको मिलता है अलोंग विथ मूवी टिकट फ्लेवर लाउंज की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री कॉकटेल ड्रिंक ऑल्सो। एंड कॉकटेल 2 की इतनी बातें हो रही है 19 जून को मूवी रिलीज हो रही है तो उसका एक और जो ट्रेंडिंग गाना है वो भी मैं फटाफट प्ले कर लेती हूँ आप सबको के लिए।

स्टूडियो में टाइम हो गया है 1:15 और अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके जो सपनों का घर है ना, अब वो दूर नहीं है। जी हाँ, ड्रीम होम मॉर्टगेज लेके आए हैं अपना एक्सपीरियंस। सिंस 1998 वो फैमिलीज को हेल्प करते आ रहे हैं उनके होम ओनरशिप के सपने को हकीकत में बदलने के लिए। कैसे? बाय पर्सनलाइज मॉर्टगेज सोल्यूशन। और इनका जो प्रोसेस है ना, काफी स्ट्रेस फ्री है, बहुत ही स्मूथ है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। और इनके पास सारे के सारे जो स्टेट्स हैं यूएस के, 50 states, उन सब में इनके पास लाइसेंस है। और इनकी टीम कमिटेड है आपके लिए राइट लोन ऑप्शन ढूंढने के लिए, जो कि टेलर हो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, बिल्कुल भी कस्टमाइज्ड रहेगा आपके लिए। आपका पहला घर अगर आप चाह रहे खरीदने के लिए, अपग्रेड करना चाह रहे हैं या फिर रीफिनेंसिंग के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो आपको रीच आउट करना चाहिए ड्रीम होम मॉर्टगेज को बाय कॉलिंग देम एट 9722455626, या फिर आप विजिट कीजिए इनका वेबसाइट विच इज dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स।

दोस्तों अब वक्त हो गया है एक और गिव अवे राउंड का। जी हाँ, अगर आपको इसका जवाब पता है तो आपको मुझे कॉल करके बताना है और आप जीत सकते हैं चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से कड़ाही पनीर या फिर कड़ाही चिकन खाने का मौका मुफ्त में। तो ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका बिल्कुल ना गवाएं और फोन्स एकदम रेडी रखें। मैं बस सवाल पूछने वाली हूँ। आज अमृता राव का बर्थडे है तो क्वेश्चन भी उनके अराउंड ही होगा। और अमृता राव की एक बहुत फेमस सी मूवी है विवाह, और हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि उस मूवी में उनके कैरेक्टर का क्या नाम था। अगर आपको जवाब पता है तो आपको कॉल करना है मुझे एट 972-235-5555 पे और जवाब बताना है।

इसके साथ हमारा गिव अवे राउंड खत्म होता है और जो आज की विनर हैं वो हैं शिखा। शिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से फ्री कढ़ाई पनीर या फिर कढ़ाई चिकन। सवाल था कि अमृता राव की जो मूवी है विवाह, उसमें उनका कैरेक्टर जो था उसका क्या नाम था, और इसका जवाब है पूनम, पूनम मिश्रा। और इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है आज कि हमें एक लिसनर जिनका नाम पूनम था उनका भी कॉल आया और उनका भी जवाब सही था, बट वो थोड़े से देर हो गई थी। और लंच की बातें कर रहे हैं हम, आज लंच का टाइम भी हो रहा है, तो एक स्पेशल न्यूज़ बता दूँ मैं चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से कि हर दिन ये जो है नई नई डिशेज रोटेट करते हैं लंच के लिए, और स्पेशल थाली होता है इनका मंडे टू फ्राइडे। एक्साइटिंग न्यू डिशेज जैसा कि मैंने बताया, रोटेटिंग डेली फॉर लंच। ये लोकेटेड है मैकडरमट ड्राइव इन एलन, तो आप जरूर जाएं। और अगर आपको इनके मेन्यू, इनके ऑपरेटिंग आवर्स के बारे में कोई डाउट्स है तो आप इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज chandigarhbites.com। और अमृता राव का बर्थडे है, उनकी बातें हो रही हैं तो उनका सॉन्ग भी प्ले होना चाहिए, है ना।

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 FM और अभी स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया है 1:37 और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक अमेजिंग न्यूज फ्रॉम द पीएमजे ज्वेल्स। जी हां, डैलस का इंतजार अब खत्म हो चुका है। 60 साल की एक्सलेंस और टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप आ रही है यहां पे हमारे साथ इन फ्रिस्को। और ये बहुत सारे कलेक्शंस रखते हैं, अमेजिंग कलेक्शंस फ्रॉम स्टनिंग गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शन, जो कि हर सेलिब्रेशन, हर माइलस्टोन के लिए एकदम परफेक्ट है, एकदम एप्ट है। इनका ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन हो रहा है ऑन June 20th, जहां पे आप इंजॉय कर सकते हैं एक्सक्लूसिव ऑफर्स, एक्साइटिंग फेस्टिविटीज और एक चांस ब्यूटिफुल ज्वेलरी पीसेस को जीतने का। और अगर मुझे पीएमजे ज्वेल्स के बारे में बोले तो मुझे याद आता है महेश बाबू और सितारा के साथ, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस ज्वेलरी ब्रांड के। वो एकदम अमेजिंग पीसेस पहने हुए ऑल ओवर द सिटी दिखते हैं उन दो बड़े बड़े होर्डिंग्स। तो पीएमजे एक ऐसा नाम है जो ट्रस्ट किया गया है सिंस जनरेशंस। तो आप जरूर एक बार जाएं, विजिट करें, स्पेशली ऑन June 20th। और ये फ्रिस्को में है ऑन मेन स्ट्रीट, जिन लोगों को नहीं पता है, और बिल्कुल अपने स्पाउसेस वगैरह को भी लेके जाए ताकि थोड़ी बहुत शॉपिंग तो बनती है।

आपको पता है एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना वो काफी सदमे में आ जाती है, मतलब डर जाती है। वो नाम है ओमर ख्वाजा का। जी हाँ, क्योंकि ओमर ख्वाजा जो है इंश्योर करते हैं कि आपको किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट या फिर किसी स्लिप और फॉल इंसिडेंट अगर आपके साथ होता है तो भी आपको अपना पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन जो भी आप डिजर्व करते हैं बिल्कुल मिले। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको तब तक पे करना नहीं होता जब तक कि आप अपना केस जीत नहीं जाते। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से डील करना स्ट्रेसफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि केस कहीं नहीं जा रहा है, इट्स अ डेड एंड, तो अटर्नी ओमर ख्वाजा इज डेफिनेटली अ राइट चॉइस फॉर यू। और आपको अगर किसी फ्री कंसल्टेशन की जरूरत है तो आपको रीच आउट करना है उन्हें बाई कॉलिंग हिम एट 4693005046, या फिर आप उनके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, विच इज अटर्नी ओमर .com।

नहीं, मैं अलविदा बिल्कुल नहीं कह रही। अभी हमारा सफर लंबा है, 2:30 बजे तक रहूंगी मैं आपके साथ। मैं हूँ आरजे सिम्मी और आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो। द शोज नेम इज आफ्टरनून अड्डा। और मैं अभी आपको टेक्सास प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर केयर करते आ रहे हैं हमारी कम्युनिटी की, अब वो लेके आए हैं एक ब्रांड न्यू नेम एंड येट अनदर लोकेशन फ्रिस्को में बाय इंट्रोड्यूसिंग लनॉक्सी मेडिकल। ये फाउंड किया गया है बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य और लनॉक्सी मेडिकल लेके आया है आपके लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक और तो और हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी, सब कुछ एक ही छत एक ही रूफ के अंडर। और ये ऑपरेट करते हैं ऑल द 7 डेज अ वीक, दैट टू फ्रॉम 8 AM टू 8 PM। वॉक इन है बिल्कुल, अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, तो आप जरूर जाएं और इसकी जो सर्विसेज हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो बिल्कुल आप जाके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं।

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
3: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
4: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
3: सच में एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
4: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
3: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे।
4: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
3: नंबर बोल जल्दी।
4: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
5: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
6: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
7: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
6: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
8: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
9: Excuse me. It's called being loyal.
8: It's called being predictable.
9: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
8: And what's so special at Neon Cactus?
9: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
8: Not bad.
9: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
8: Okay, this I didn't expect from you.
9: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
10: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
11: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

जी हाँ बिल्कुल, आपको भी लाइफ ऐसे ही इंजॉय करनी है जैसे बस आज का दिन आखिरी दिन हो, एकदम कल हो ना हो क्या पता, तो हर दिन को बेशक बेशुमार जिए। स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया है 2:10 और मैं हूँ आरजे सिम्मी विद द शो आफ्टरनून अड्डा ओनली ऑन फनेचर रेडियो 104.9 FM। और अभी मैं आपके लिए तनिष्क की तरफ से एक अनाउंसमेंट, एक इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ कि तनिष्क सेलिब्रेट कर रहा है द फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज। आपको अगर कोई पुराना गोल्ड है आपके पास, ओल्ड गोल्ड है, तो आप वहां जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको मिलेगा $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज्ड गोल्ड विद द डायमंड परचेसेस। और तो और 9 कैरेट से ऊपर के गोल्ड, ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर 0% डिडक्शन है। तो अब आपने पुराने गोल्ड को, ओल्ड गोल्ड को एक खूबसूरत, नया, ब्यूटिफुल और टाइमलेस कलेक्शन में बदलने का वक्त आ गया है, ओनली एट तनिष्क USA। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप बिल्कुल चेक कर ले इन द स्टोर। और अभी वक्त आ गया है द लास्ट गिव अवे ऑफ माय सेगमेंट, और अगर आप इसको जीतते हैं तो आपको मिलता है फन पिज़्ज़ा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। मैं एक सॉन्ग बजाने वाली हूँ और आपको बताना है कि ये कौन सी मूवी से लिया गया है और इसमें कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है। ओके, यू हैव टू कॉल मी एट 972-235-5555।

ये था फ्रॉम दी मूवी हम दिल दे चुके सनम, और इसमें थी ऐश्वर्या राय, अजय देवगन एंड सलमान खान। और आज का जो गिव अवे जीता है वो जीता है अरुण ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस अरुण, आपको मिलता है $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। बहुत सारे कॉल्स हैं, सॉरी जिनका भी मैं कॉल नहीं ले पाई। और फन पिज्जा किचन की बात करते हैं कि फन पिज्जा किचन में ना यहाँ पे चीज़ और देसी ट्विस्ट का अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं, नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं। वेजिटेरियन ऑप्शंस में है अचारी पनीर पिज्ज़ा, और नॉन वेज में है तंदूरी चिकन पिज्ज़ा। और यहाँ पे हर एक स्लाइस आपके आने का वेट कर रहा है कि आ जाओ और मुझे खा लो। अगर आपको मेन्यू के बारे में और डिटेल्स चाहिए, ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स के बारे में डिटेल चाहिए, तो आप जा सकते हैं उनके वेबसाइट पे, विच इज funpizzakitchen.com। और आज का विनर तो अरुण, आप तो लकी निकले आज, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन।

अब हमारा जो शो है वो अपने अंतिम चरण अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है। मैं हूं आरजे सिम्मी और ये शो था आफ्टरनून अड्डा। और दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस। वो आपको टैक्स प्लानिंग में हेल्प कर देंगे कि उनके पास है इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल, इंडिविजुअल्स के लिए भी साथ ही साथ बिजनेसेस के लिए भी। काफी ट्रस्टेड है, इफिशियंट है और आपको फ्यूचर के लिए कर देते हैं एकदम। आपको अगर एजी फिनटेक्स से रीच करना है तो आप उनको उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं विच इज agfintechs.com, नहीं तो आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। द नंबर इज 4699429888। रिपीट कर देती हूँ, 4699429888। और जाते जाते हमारे लिसनर ने एक सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, तो बनता तो है, मतलब ये गाना उनके लिए बजाना। आई सी यू टुमारो, आई कैनॉट सी यू टुमारो बट यू डेफिनेटली हियर मी टुमारो एट 12:30 to 2:30। कीप लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
6: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
8: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
9: अरे कहना क्या चाहते हो?
10: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
1: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
11: हाँ।
1: घर रिलोकेट करनी है?
11: हाँ।
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
11: हाँ भाई हाँ।
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
12: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo. 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
2: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
16: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Funisia Radio.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद। फन एशिया रेडियो 104.9 FM पर मैं करती हूँ, यानी कि मैं मधुलिका करती हूँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद, क्योंकि आएंगे कुछ गिव अवेज, कुछ मज़ेदार फन और इंटरेस्टिंग सवाल, एंड ऑफ कोर्स आपकी और मेरी पसंद के गाने। तो भाई, अगर गाने रिक्वेस्ट करने हैं तो नंबर तो पता होना ही चाहिए। सो द स्टूडियो नंबर इज 972-235-5555। हर रोज़ आपके लिए अलग अलग थीम के गाने लेकर आती हूँ। सो आज का जो थीम है वो कुछ इस तरह का है कि इट्स अ जर्नी बिटवीन इंगेजमेंट टू द वेडिंग, यानी कि इंगेजमेंट से लेके जितनी भी और यू नो फेस्टिविटीज़ होती हैं शादी के दौरान, और शादी एंड विदाई, इन सभी थीम पर बेस्ड गाने जो भी बॉलीवुड यू नो कोक स्टूडियो हिंदी पॉप एल्बम्स में बने हैं वो गाने सुनेंगे हम आज शाम 5 बजे तक। द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555। दिस इज मधुलिका, विल बी देयर विद यू टिल 5।

That was taken from the movie हम आपके हैं कौन. मतलब यू नो आई रिमेम्बर जब ये मूवी आई थी एंड मैंने मेरे कजिन जो एक बड़े भैया थे वो ये देख के आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कैसी है मूवी, गाने तो बड़े अच्छे हैं. सो ही सेड कि ऐसा लगता है कि कोई शादी का वीडियो कैसेट हम देख रहे हैं, बिकॉज द होल मूवी इज अबाउट शादी. तो वेल एज यू वुड हैव गेस्ट, इस मूवी से हम कई गाने सुनेंगे अपने इस अगले 2.5 घंटे में. लेकिन अगला गाना प्ले करूँ उसके पहले मैं आपको ओमर ख्वाजा के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि होता है कि ना चाहते हुए भी आप या आपके दोस्त या आपके फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट में या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट में. तो आपको अटर्नी ओमर ख्वाजा रखने हैं याद. ये ना केवल आपका केस लड़ेंगे, आपको कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी से भी डील करेंगे, एंड साथ ही साथ यू डू नॉट पे अंटिल यू विन. सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन आप अटर्नी ओमर ख्वाजा को कॉल करें. द नंबर इज 4693005046 और विजिट अटर्नी ओमर .com. Well, this is Madhulika. I will be with you till 5 p.m. and we are listening to songs related to the theme of wedding. So be it engagement, be it, you know, any wedding rituals, koi bhi gana agar aisa aapko yaad aa raha hai, the studio number is 972-235-5555. एंड द नेक्स्ट वन, यहाँ पर इस वीडियो में, इस गाने के वीडियो में दिखता है कि वो जो लड़का है वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बहन की शादी में बुलाया है, सो दैट यू नो द पेरेंट्स गेट टू मीट हर. इट्स अ रियल क्यूट नंबर एंड अ रियल फन वन एज वेल.

All right, well, that was, Malika Arora, not Malika Arora. And yes, आज हम सुन रहे हैं शादी से रिलेटेड, शादी के थीम से रिलेटेड गाने. स्टूडियो का नंबर 972-235-5555. द नेक्स्ट वन इज अ सॉन्ग रिक्वेस्ट. मैं नाम पूछना भूल गई, बट शी डिड मेंशन दैट यू नो ये जो गाना उन्होंने बोला है कि ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल होता है, इसके बारे में बताऊंगी. लेकिन पहले सुनते हैं ये गाना, एंड देन आई विल टॉक अबाउट द मेहंदी सेरेमनी.

टेकन फ्रॉम द मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी हाँ, आज हम सुन रहे हैं शादी पर बेस्ड थीम जो है हमारा, उसी तरह के गाने सुन रहे हैं जिनमें कि कहीं शादी का कोई ना कोई रिचुअल हो रहा हो, राइट, या कहीं शादी की बात हो रही हो। तो भाई, शादी की बात हो और ज्वेलरी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको तनिष्क के बारे में बताऊं, बिकॉज तनिष्क प्रेजेंट्स द फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज। जी हाँ, एक्सचेंज कर सकते हैं आप अपना ओल्ड गोल्ड। कई बार होता है ना कि वो ओल्ड गोल्ड कुछ ख़राब हो गया या यू नो लाइक टूट टाट गया है, लेकिन अब गोल्ड है। सो यू कैन एक्सचेंज योर ओल्ड गोल्ड एंड गेट $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज गोल्ड विद डायमंड परचेजेस। और 9 कैरेट से ऊपर के ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर 0% डिडक्शन भी है। सो टर्न योर ओल्ड गोल्ड इंटू समथिंग न्यू, समथिंग ब्यूटिफुल एंड समथिंग टाइमलेस, ओनली एट तनिष्क USA। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं इस मेहंदी वाले गाने के बाद, इस मेहंदी रिचुअल के बाद भी करूँगी, तो क्विकली बताऊँ दैट ये जो ट्रेडिशन है, मेहंदी इज़ ओवर 5,000 ईयर्स ओल्ड। यू नो, ये जो ट्रेडिशन ऑफ अप्लाइंग है ना, डेट्स बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड वॉज यूज नॉट ओनली फॉर ब्यूटी बट ऑल्सो फॉर इट्स कूलिंग प्रॉपर्टीज। कहते हैं कि यू नो, मेहंदी फंक्शन इज यूजली फिल्ड विद डांसिंग, गेम्स, म्यूजिक एंड लॉट्स ऑफ लाफ्टर। कई जगह दुल्हन के हाथ में जब मेहंदी लगाई जाती है तो उसमें हस्बैंड के नाम के इनिशियल्स के डिज़ाइन किया जाता है, या फिर ये भी माना जाता है दैट मेहंदी नेचुरली कूल्स द बॉडी। यू नो, इट्स बिलीव टू हेल्प काम वेडिंग नर्व्स एंड रिड्यूस स्ट्रेस बिफोर द बिग डे। और ये भी माना जाता है कि जितनी गहरी मेहंदी रचेगी, उतना ही ज़्यादा प्यार आपको अपने स्पाउस और इन लॉज से मिलेगा।

Well, that was taken from the movie Zubeda. That was मेहंदी है रचने वाली. जी हाँ, सच्ची बात है कि यही ट्रेडिशन है कि जितनी गहरी मेहंदी रचेगी उतना ही ज़्यादा कहा जाता है कि आपका जो स्पाउस है या आपके जो इन-लॉज हैं वो आपको प्यार करेंगे. सो दैट्स अनदर रीज़न वाई जो दुल्हन होती है उसका बड़ा मन होता है कि यार एकदम गहरी कलर की मेहंदी रचे. अच्छा, अगला गाना प्ले करूँ उसके पहले मैं आपको टेक्सास प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहूँगी, बिकॉज 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक जो हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी, और अब वो एक नए नाम लिनॉक्सी मेडिकल के नाम से आ रहा है फ्रिस्को लोकेशन में. जी हाँ, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, लिनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्स रेज, सिटी स्कैंस, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ऑल अंडर वन रूफ. यानी कि एक ही जगह जाएंगे और आप ये सारे काम वहाँ करवा सकते हैं, हो सकते हैं आसानी से. और सबसे अच्छी बात, दे आर ओपन 7 days a week, पूरे हफ्ते सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक दे आर ओपन, एंड यू कैन वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड व्हाट्सोएवर. दैट्स टेक्सास प्राइमरी केयर, जो कि फ्रिस्को लोकेशन में लिनॉक्सी मेडिकल के नाम से खुला है, एंड इट्स ओपन 7 days a week फ्रॉम 8 AM to 8 PM. You can walk in anytime, no appointment needed. Well, the next song is taken from the movie Bareilly Ki Barfi. जी हाँ, शाम 5 बजे तक हम सुनेंगे वो गाने जिन गानों का थीम जो है वो शादी से रिलेटेड हो, या तो शादी हो रही हो या कोई शादी का रिचुअल उस गाने में डिपिक्ट हो रहा हो, बात चल रही हो शादी की. सो इस तरह के गाने सुनेंगे. द स्टूडियो नंबर इज 9722355555. दिस इज़ मधुलिका. आई विल बी विद यू टिल 5 PM.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: अपनी roots भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
4: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
5: इट्स लॉसन.
4: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
5: इट्स लॉसन.
4: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
6: इट्स लॉसन ट्रेवल्स फॉर ऑल योर ट्रेवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458. द ट्रेवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रेवल.
7: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को.
8: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
9: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
8: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
10: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
11: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
12: Is shehar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuaan dhuaan. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
13: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
0: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
14: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी.

बॉलीवुड सॉन्ग्स जिनमें की बैकड्रॉप में या थीम में शादी हो रही हो या शादी की बात हो रही हो. सो द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555. शादी की बात हो ही रही है तो होता है ना कि हर लड़की का एक सपना होता है कि मेरा होने वाला जो हस्बैंड है वो कैसा हो, क्या हो. सो वेल, हियर इज द नेक्स्ट वन, दैट्स मेड इन इंडिया.

0: doing great. What's your name?
1: पूर्वा, पूर्वा उपाध्याय.
0: All right, पूर्वा, तो बताइए कौन से चार गाने आप बताने वाली हैं?
1: First one is बाबुल का ये घर बहना दो दिन का ठिकाना है.
0: Oh, सेंटी सेंटी. Second
1: one is मेहंदी लगा कर. Then मेहंदी लगा के रखना.
0: डोली सजा के रखना, बिल्कुल, okay.
1: And the third one is सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए.
0: हाँ, क्या बात है, क्या बात है, okay.
1: And the fourth one, मैंने आपको कौन सा बताया था? There are many actually.
0: So, फिर बताइए कोई सा भी और बता दीजिए.
1: अच्छा, तो fourth one is बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको दुखी
0: बना. आज तो मतलब रुला के ही छोड़ेंगे आप हैं. So, पूर्वा, is there a song that I can play for you?
1: So, एक गाना है, हमने सुना है, तुमने जीवन साथ चुना है. वो भी शादी से रिलेटेड ही है.
0: जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ. ये कौन सी मूवी का गाना है भाई?
1: ये उदय चोपड़ा की मूवी का गाना है.
0: अच्छा.
1: मेरे यार की शादी है मूवी का.
0: सो लेट मी सर्च दैट अप एंड व्हाइल आई एम गोना प्ले अ डिफरेंट सॉन्ग फॉर आवर लिसनर्स.
1: उसका एक गाना है ढोलक में तार है पायल में छप छप, तो वो भी शादी का गाना है.
0: बाप रे पूर्वा, आप ढूंढ के ऐसे गाने ला रही है जो मैंने शायद कभी नहीं सुने, बट लेट मी सर्च देम अप एंड इन द मीनवाइल आई विल प्ले.
1: थीम रिमाइंडेड मी,
0: थीम ही कुछ ऐसा है. आपको अपनी शादी या अपने भाई बहनों की शादी याद आती है. याद, राइट, दैट इज सो ट्रू, सो ट्रू. सो व्हिच इज अ सॉन्ग व्हिच रिमाइंड्स यू ऑफ योर वेडिंग?
1: मेरी शादी में तो मतलब मुझे लगता है कि वो वाला गाना मैंने बहुत सुना था जो मैंने अभी बताया आपको, सजना तेरे प्यार में.
0: हाय हाय हाय, ठीक है पूर्वा, सो आई एम गोना प्ले दैट फॉर आवर लिसनर्स.
1: वो टाइम पे माय हस्बैंड वाज इन यूएस, तो ऐसा होता है ना कि अब मुझे इंडिया छोड़ के यूएस आना.
0: ओके ओके ओके, ठीक है, तो आई विल प्ले दैट सॉन्ग. आई विल टेक यू ऑफ एयर, टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू. रेड हॉट चिली पेपर का आपको ये गिव अवे मुबारक. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.

0: All right, that was made in India. And मैंने Red Hot Chili Pepper की तरफ से जो giveaway है उसका सवाल ये था कि आपको मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार गाने बताने हैं बॉलीवुड से जिनमें कि जो थीम हो वो शादी से रिलेटेड हो. एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर. हाउ आर यू?
1: आई एम डूइंग गुड. हाउ आर यू?

That was taken from the movie Two States. अच्छा अगला गाना प्ले करूं उसके पहले मैं आपको पीएमजे ज्वेल्स के बारे में बताऊंगी. भाई शादी ब्याह की बात हो रही है तो क्यों ना आपको ज्वेलरी के बारे में भी बताया जाए, राइट? सो डालस आपका जो इंतजार है वो हुआ खत्म बिकॉज पीएमजे ज्वेल्स इज नाउ कमिंग टू फ्रिस्को bringing over 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. तो आप चाहें तो उनका stunning gold या diamond या फिर bridal collection for every celebration and milestone explore कर सकते हैं. साथ ही साथ उनकी grand opening celebrations join करें June 20th को and enjoy exclusive offers, exciting festivities and chances to win beautiful jewelry pieces. Proudly associated with Mahesh Babu and Sitara, PMJ is a name trusted by generations. Ji haan, visit PMJ Jewels of Frisco on Main Street and discover jewelry that tells your story. And the next one is a song request and taken from the movie Kabhi Khushi Kabhi Gum.

Well, that was taken from the movie Kabhi Khushi Kabhi Gham. अच्छा जब शादी ब्याह होता है तब भी आप इतनी प्लानिंग करते हैं. सिमिलरली आपको अपने फाइनेंसिस की प्लानिंग करना भी बहुत ज़रूरी है. सो आपको बताऊँ मैं माई टाइम इक्विटी विच इज़ लेड बाई CPA सुधीर पाए, क्योंकि ये जो माई टाइम इक्विटी है हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एज वेल. तो चाहे आप प्लान कर रहे हो लॉन्ग टर्म वेल्थ या retirement या growing your investments, My Time Equity offers personalized solutions designed around your goals. So visit mytimeequity.com or you can call them. The number is 469-702-1272.

वेल दैट वाज बरेली की बर्फी से गाना था स्वीटी तेरा ड्रामा. इसमें कृति सैनन थी और कृति सैनन दिखने वाली हैं कॉकटेल 2 में. जी हाँ, आफ्टर द सुपरहिट सक्सेस ऑफ 2012's कॉकटेल, द ड्रामा रोमांस एंड फ्रेंडशिप आर बैक विद अ फ्रेश ट्विस्ट. गेट रेडी फॉर कॉकटेल 2 रिलीजिंग इन थिएटर्स ऑन जून 19th, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना. A new story, new emotions and a brand new cocktail of love, friendship and heartbreak awaits you. Well, do not miss Cocktail 2 in theaters June 19th onwards.

टेकन फ्रॉम द मूवी जब वी मेट, दैट वॉज मौजा ही मौजा। जी हाँ, आज हम सुन रहे हैं 5 बजे तक वो गाने जिन गानों की थीम में शादी हो, यानी कि या तो शादी हो रही हो, या शादी के कोई रिचुअल्स डिपिक्ट हो रहे हो, या शादी की कोई बात हो रही हो। सो द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555। और शादी होती है तो एक चीज जिसपे बड़ा जोर दिया जाता है, दैट इज द खाने पीने का इंतजाम। यू नो, मतलब 4-5 महीनों तक यही डिस्कशन होता है कि यार क्या बढ़िया देसी घी की खस्ता कचौड़ी थी, या वो पान कितना अच्छा था, या वो रबड़ी कितनी अच्छी थी, राइट? तो खाने पीने की बात चल पड़ी है तो मैंने सोचा आपको तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट के बारे में बताऊं। बिकॉज अगर आपको सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स, रिच करीज, नॉर्थ इंडियन अपनी फेवरेट करीज चाहिए, होम स्टाइल पंच के साथ गर्मा गर्म नान चाहिए, देन यू नीड टू हेड टू तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट। इट्स लोकेटेड इन गार्लैंड। तो यही बात बतानी थी, एंड उसके बाद आई एम गोना प्ले द सॉन्ग फ्रॉम बधाई हो, एज दैट्स अ सॉन्ग रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन।

Taken from the movie हम आपके हैं कौन. And yes, अगला गाना प्ले करूँ उसके पहले आपको बताऊँ that अक्सर आपने देखा होगा कि जब दुल्हन एंट्री मारती है तो उसके भाई या यू नो चाचा चाची कजिन्स जो हैं वो एक फूलों की चादर लेकर साथ साथ चलते हैं. सो यू नो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है इज दैट फूलों की चादर रिप्रेजेंट्स द ब्राइड बींग सराउंडेड बाय द लव एंड ब्लेसिंग्स ऑफ हर फैमिली एज शी टेक्स ऑन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉक्स ऑफ हर लाइफ. एक तरह की वो ब्लेसिंग होती है, एक तरह का एक वो जेस्चर होता है कहने के लिए कि भगवान करे आगे भी इसकी दुल्हन की लाइफ जो है फूलों से सजी रहे एंड हम हैं इसके साथ. यू नो इट्स स्पेशली कॉमन इन पंजाबी एंड नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स. सिमिलर कैनोपी ट्रेडिशंस एग्जिस्ट इन मेनी cultures around the world symbolizing protection, honor and celebration. And the next one, well, it's Sauda Khara Khara taken from the movie Good News and that's a song request. Studio number once again is 972-235-5555. This is Madhulika and I'll be with you till 5.

taken from the movie Zindagi Na Milegi Dobara. And जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक giveaway ला रहे हैं आपके लिए और उसका सवाल भी पूछूंगी आपसे. पहले तो बता दूं कि ये giveaway है इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ की तरफ से. So here's your chance to win a special grocery hamper from इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ. So you know, your one-stop destination for authentic Indian

पूछूंगी आपसे, पहले तो बता दूं कि ये गिव अवे है इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ की तरफ से. सो हियर इज योर चांस टू विन अ स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ. सो यू नो योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज, चाहे फ्रेश प्रोड्यूस हो, स्पाइसेस हो, स्नैक्स हो, एंड ऑल योर डेली देसी नीड्स. इंडिया बाजार इज लोकेटेड एट 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ फॉर पीपल लिविंग इन फोर्ट वर्थ, केलर, हर्स्ट एंड हैसले. सो अब सवाल ये है, सवाल ये है कि अगर आपने मेरे सवाल का जवाब दिया तो आप ये हैम्पर जीत जाएंगे. सो I'm going to give you a translation of a Bollywood song. Are you ready for that? So I'm going to give you an English translation of a song, a very popular song, and you have to tell me which song I'm talking about. So the translation is something like this. The moment you made an entrance, bells started ringing in my heart. So tell me which song I'm talking about, right? So the moment you entered, the bells started ringing in my heart. Which song I'm talking about? Studio ka number 972-235-5555.

0: बिल्कुल, सरेंडर तो होना ही पड़ेगा. शायद सवाल बड़ा आसान सा था, बिकॉज बहुत से कॉल्स आए आ रहे हैं और आते ही जा रहे हैं. सवाल ये था कि मैंने आपको एक गाने का इंग्लिश ट्रांसलेशन बोला था एंड कहा था कि गेस करें मैं किस गाने की बात कर रही हूँ. सो द ट्रांसलेशन वन मोर टाइम फॉर यू इज, द मोमेंट यू मेड एंट्रेंस बेल स्टार्टेड रिंगिंग इन माय हार्ट एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Hi, it's Praveen.
0: Hey Praveen, how are you?
1: I'm good.
0: Awesome.
1: The answer to that question I think was Tune Mari entry hai Dil Mein Baji Ghanti yaar.
0: Kya baat hai, bilkul sahi entry mari hai aapne and bilkul jeet liya aapne ye India Bazaar Fort Worth ki taraf se ek grocery hamper. I'm going to take you off air while I'm going to play this fun number for our listeners.
1: Thank you very much.
0: Thank you.

That was taken from the movie Gunde. That was Entriya's song. And entry तो होती है बारात की, right? जब बारात आती है, जो बाजे बजते हैं, उसकी बात ही अलग है. And बारातियों का एक अपना ही टशन होता है, नहीं? कि वो बिल्कुल भरी बीच रोड में आकर नाचना शुरू हो जाएगा. वो नागिन डांस कोई एक दोस्त करेगा. You know, वो जो सामने वाले समधी हैं, वो बेचारे आएंगे कि भाई बस करें, अब आ भी जाएं. एंड बराती वहीं, यू नो, ठीक द्वारे पे, जब आप वहाँ वेन्यू पे पहुँच जाते हैं, तो वो एक जोश अलग ही लेवल पर पहुँच जाता है. सो यस, बराती होने का एक अलग ही मज़ा होता है. अब आप सोचेंगे इतनी बारात बारात की बात क्यों हो रही है, तो बात इसलिए हो रही है कि आज शाम 5 बजे तक हम वही गाने सुन रहे हैं जिन गानों में कहीं ना कहीं कोई शादी की बात हो रही हो, कोई रिचुअल हो रहा हो, या फिर वीडियो में शादी हो रही हो. जैसे कि ये अगला गाना टेकन फ्रॉम मेजर साहब, जिसमें बाराती एकदम मज़े से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं.

Well, that was taken from the movie Major Saab. अच्छा, ये तो हुई बरातियों की बात, अब थोड़ी घरातियों की बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बारात घरात तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार रिचुअल आई बिलीव इज द जूता चुराई, जब जूता छुपाई रिचुअल होता है ना. आई थिंक देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट रिचुअल. इट्स बेसिकली अ फ्रेंडली बैटल बिटवीन टू फैमिलीज. यू नो, जो दुल्हन की बहन है, जो कजन्स हैं, दे स्टील द ग्रूम्स शूज, राइट? दूल्हे के जूते चुराए जाते हैं वाइल ही इज़ बिजी विद द वेडिंग रिचुअल्स. अच्छा, होता भी ये है कि जब पूजा के लिए जाना है तो दूल्हा जूते तो उतारेगा ही उतारेगा. एंड जो ग्रूम साइड, जो दूल्हे की साइड होती है, इट ट्राइज टू गार्ड और रिकवर देम. इट क्रिएट्स इंस्टेंट फन एंड ब्रेक्स द आइस बिटवीन द टू फैमिलीज. साथ ही साथ द ग्रूम मस्ट पे अ रैंसम. दूल्हे को पैसे तो देने पड़ते हैं, एंड टू गेट हिज शूज बैक द ग्रूम यूजुअली हैज टू नेगोशिएट एंड ऑफर मनी और गिफ्ट्स. एक तरह से ये एक, पहले क्या होता था, सालियों को और कोई रीजन नहीं होता था जीजा जी से बात करने का, तो ये उनको एक मौका दिया जाता था कि इसी बहाने अब आप अपने ये नए फैमिली मेम्बर जो ये जीजा जी आए हैं, इनसे आप बातें करेंगी, कुछ हंसी मजाक करेंगी. एंड दिस ऑल्सो यू शुड टेस्ट द ग्रूम्स जेनरॉसिटी, कि भाई ये जो रिचुअल है, इट प्लेफुली चेक्स वेदर द ग्रूम इज विलिंग टू पार्ट विद सम कैश फॉर हिज न्यू फैमिली. साथ ही साथ दुल्हन की बहन को भी कुछ रोल मिल जाता है, नहीं तो सारा फोकस दूल्हे दुल्हन पे ही रहता है, एंड मज़ा तो आता ही है. सो यस, जूता छुपाई इज वन फन रिचुअल. आई वुड लव डूइंग इट फॉर ऑल माई सिस्टर्स. एंड मज़ा तो सच में बहुत आता था कि कहाँ छुपाएंगे, कैसे निकालेंगे, यू नो, क्योंकि सब बाराती जो हैं, जो दूल्हे के दोस्त हो या भाई लोग होते हैं, दे आर लाइक गार्डिंग इट बिग टाइम. और स्पेशली आफ्टर दिस मूवी हम आपके हैं कौन, तो ये कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया था कि अब ये कैसे चुराया जाएगा, कहाँ पूरी एक यू नो तरकीब लगाई जाती थी कि कैसे सबको इधर उधर करके हमें ये जूते पार करने हैं.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Heere moti maina chahu.
3: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
5: लिया।
4: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
5: नहीं आया।
4: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
7: Jis baat ka dar tha wahi hua. Lymphosarcoma of the intestine.
8: अरे कहना क्या चाहते हो?
9: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई. लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी. अब टेंशन का टाइम गया. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं. हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर. फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू. कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. Your health, your language, your comfort.
10: मामू, देखो क्या हो गया.
11: ओ, क्या हो गया?
10: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
11: ओए, जर्मन का कमाल है.
10: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
11: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन. मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
12: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
13: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
14: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
13: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
15: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
16: Documents ya parcel bhejni hai?
17: हाँ.
16: घर रिलोकेट करनी है?
17: हाँ.
16: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
17: हाँ भाई हाँ.
16: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
18: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
19: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
20: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
19: Kya matlab?
20: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
19: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
20: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
19: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
18: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.
6: डालस की धड़कन 104.9 FM Fun Asia Radio.
17: You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूं मधुलिका, दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक. And today our mortgage loan segment is with Mr. Panjwani from Dream Home Mortgage, a division of Brazos National Bank located in Carrollton, Texas. Dream Home is committed to providing clients the lowest rate in real estate available in their areas. Whether a person is a first-time home buyer, consolidating outstanding debt, refinancing their home, or maybe they are ready to find their dream home, well, Dream Home Mortgage and their professional team will guide you step by step through the process, obtaining a financial solution that is suitable to meet their financial needs, right? So today we have Mr. Panjwani with us, and he'll provide you with a backdrop of his company and answer some important questions for all of us. Good evening, Mr. Panjwani. How are you?
21: I'm doing great. Madhulika, aap kaisi ho? Aap to pure Panisha pe chhai hui ho aajkal.
17: No, I'm just covering for Kiran today. So, Mr. Panjwani, I would like to ask some questions on behalf of our listeners.
21: Anytime, boss. Make sure.
17: Okay.
21: Try to give you the best answer.
17: Ji, thank you. So, generally, logon ka question hota hai that how can I qualify? Like, what's the importance for pre-qualification?
21: Sabse important, I would say, the most important step when you're planning to buy a house is getting pre-approved or pre-qualification. Kyunki usse as a buyer, especially jo first-time home buyer hote hai, unko pata chalta hai ki how much house they can buy, whether they should buy a house, are they ready to make that move. So I feel mere hisab se jo sabse important step hai is get yourself pre-approved. And when you get pre-approved as a borrower, we can tell you how much money you can qualify for, how much money you need at the time of closing, aapki kya payments hogi. Based on this, aap decide kar sakte ho ki mujhe kya amount ka ghar buy karna chahiye. Because sometimes there is a big difference between aapka comfort level, payment ka kya comfort level hai, and how much you can qualify for. Those are two different things. Because we have a lot of people who say, oh, sir, I can qualify for how many houses. Okay, you can take 7 lakh houses. Okay, great, I want to buy it. And I'm like, okay, now your payment is going to be around $5,000 or $5,500 because you only want to put 5% down.
17: Right.
21: And then like, no, that's out of our range. After our budget. So that's the importance of getting pre-approved.
17: So, and if someone has a low credit score, hai, how does that affect the chances of receiving a loan?
21: The credit score is basically the foundation of the loan process. Sabse important jo hai na loan process ka sabse important, especially residential side pe, is your credit score. Abhi hum ek example dete ki when we I have a borrower jinka score 620 hai right now, so he hardly qualifies. And he's getting rates in the sevens. Agar yahi rate uska 780 hota ya 760 hota, his rate would be in the low sixes.
17: Right.
21: So almost the rate is jumping up by 1.5%, 1.25% because he's done in the bottom tier. And Fannie Mae, Freddie Mac, top score is 780 credit score. And after that, every 20 points, you drop a tier. मतलब कि अगर आप 740 स्कोर है तो यू आर इन द थर्ड टियर, 680 है तो यू आर इन द सिक्स्थ टियर. सो एवरी 20 पॉइंट्स यू विल ड्रॉप अ टियर एंड 620 इज द बॉटम टियर व्हेन वी टॉक अबाउट फैनी मी और फ्रेडी मैक लोन. सो क्रेडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट ड्रीम होम वी कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर. हमने काफी काफी लोगों को हेल्प किया है जहां उनके हमने क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव किए हैं. कभी कभी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो क्वालिफाई ही नहीं होते. इट टुक अस 3-4 months, समटाइम्स इट्स टेकन ऑलमोस्ट अ ईयर, बट वी हैव बीन सक्सेसफुली बीन एबल टू मेक देम फ्रॉम अ टेनेंट टू अ लैंडलॉर्ड और अ होम ओनर, सो और फ्रॉम अ रेंटर टू अ होम ओनर. सो
17: अच्छा, दूसरा सवाल थोड़ा बंडल्ड इन है. जैसे यू नो कमर्शियल लोन होता है, कैश आउट लोन होता है, देन देयर इज दिस एफएचए लोन. तो क्या डिफरेंस है इन सब में?
21: आपने तो पूरा बिरयानी बना के मेरे हाथ में दे दिया है.
17: तो बट ये यू नो ये आप वर्ड सुनते हैं लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस.
21: सो कैश आउट कैन बी ऑन कमर्शियल लोन और प्राइमरी रेसिडेंस और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इवन अ लैंड और any kind of real estate. So what cash out means is you're getting money out of your house or you're taking money out of your land which is paid off, or you have 60-70% equity, or you have an office condo, mm-hmm. or you have a paid off shopping complex, or you have a shopping complex that has 60-70% equity in there. I have a loan that I'm doing where one partner is trying to buy another partner out. I have a loan there where they are trying to build a restaurant. So, यहाँ एक होता है कि construction loan कर रहे हैं हम, और दूसरा है कि वो उसके partner को buyout कर रहा है. So they have a couple of office condos, and one of them they are using it for their own use, and then the second one they are renting it out. So one partner wants to get out of it. So now we are going to get a cash out on those office condo and just pay off his other partner. Same thing, I have a borrower, he has a lot of credit card debts, almost $80,000-$90,000 in credit card debts. We're going to get cash out, uske ghar mein se cash out, cash nikal ke, unka credit card pay off karne wale hai, unki ek gaadi pay off karege, and then he'll have just one mortgage payment. So that is cash out loan. Aapne kaha FHA loan.
17: Right.
21: FHA loan is a type of loan, jo mostly jinki credit score kam hote hai, जिसके डेट टू इनकम रेशियो हाई होते हैं, जो बैंकरप्सी 2-3 साल पहले फाइल की है, उनके लिए एफएचए लोन इज अ ग्रेट ऑप्शन. क्योंकि आप 3-3.5% डाउन डालते हो, यू जस्ट पुट 3.5% डाउन इफ यू क्वालिफाई ऑफ कोर्स, एंड देन यू कैन स्टिल गेट अ फेनोमिनल रेट इवन अगर आपकी बैंकरप्सी 2.5-3 साल पुरानी है. बट अगेन वी हैव टू मेक श्योर यू फिट इन टू दैट बॉक्स, यू क्वालिफाई. बट इट्स अ ग्रेट प्रोग्राम फॉर पीपल हु हैव हाई डेट टू इनकम रेशियो और क्रेडिट स्कोर जिनका 580 है, 600 है. सो वो एफएचए लोन हुआ. हम कमर्शियल लोन की बात किए, हम कैश आउट की बात किए.
17: ओके, एंड देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? हाउ डज आवर लिसनर्स, हाउ डू दे कांटेक्ट हियर?
21: दे कैन कॉल मी एट 972-245-5626, 972-245-5626, और info at dreamhomemortgage.com. They can also visit our website, that is www.dreamhomemortgage.com.
17: Wonderful. Well, thank you so much, Mr. Panjwani. आपने बहुत सी you know important information हमारे साथ share की, and वो जो words हैं जो generally लोग confused हो जाते हैं, so उसको आपने काफी अच्छे से clarify किया है. So thank you for the time and thank you for coming on with us.
21: Thank you. Always my pleasure. Thank you to you and thank you to your listeners.
17: Thank you. Have a wonderful day.
0: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.

That was Palash Sen's Kabhi Aana Tu Meri Gali. Yes, आज हम सुन रहे हैं वो गाने जिन गानों में कहीं कुछ थीम जो है वो शादी से रिलेटेड हो. तो अगला गाना प्ले करूं उसके पहले आपको बताऊंगी कि जो सात फेरे होते हैं ये होते क्यों हैं. Well, in many Hindu weddings, the couple takes seven rounds around the sacred fire. एंड आपको पता है कि वो ईच राउंड, वो हर एक फेरा जो है रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट प्रॉमिस, फ्रॉम लव एंड रिस्पेक्ट टू प्रॉस्पेरिटी एंड लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप. ऑल ईच फेराज हैव अ यूनिक प्रॉमिस दैट द कपल मेक्स टू ईच अदर. या फिर जूता छुपाई की तो मैंने आपको बात बता ही दी. देन आपने देखा होगा कि अक्सर विदाई में भी ना द ब्राइड थ्रोज राइस बिहाइंड हर as she leaves her parents' home. It basically symbolizes gratitude and wishes prosperity for the family that she is leaving behind. Well, बहुत से ऐसे और अच्छे अच्छे you know rituals होते हैं, उनका कुछ एक reason था या चलता आया है, and कई बार लोग बस follow कर रहे होते हैं without even understanding कि ये क्यों हो रहा है. तो सिमिलरली जो सेक्रेट फायर है इज़ लाइक द मेन विटनेस इन हिंदू वेडिंग्स. द सेक्रेट फायर अग्नि जो है इज़ कंसिडर्ड द डिवाइन विटनेस टू द मैरिज. एंड गठबंधन, द टाइंग द नॉट, इज़ बेसिकली ब्राइड के दुपट्टे को ग्रूम के स्टोल के साथ बांधा जाता है, सिम्बलाइजिंग द यूनियन ऑफ टू लाइव्स एंड टू फैमिलीज. वेल द नेक्स्ट वन इज़ अ सॉन्ग रिक्वेस्ट टेकन फ्रॉम द मूवी बार बार देखो.

well, that was Nachdene Sare taken from Bar Bar Dekho. अच्छा पता है इंडियन वेडिंग्स में कई जगह ये माना जाता है कि जब हल्दी हो जाए, जब हल्दी सेरेमनी हो जाए, तो जो दूल्हा दुल्हन है, जो बन्ना बन्नी है, उनको फिर घर में ही रहना चाहिए. दे बिलीव दैट दे शुड स्टे इंडोर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस और बैड लक बिफोर द वेडिंग. As you know, Haldi marks the official beginning of the wedding rituals. So from that point until the actual wedding ceremony, Dulhan aur Dulhe ko expect kiya jata hai to focus on the upcoming marriage and remain within the family's care. Lekin masti hona to banti hai, right? Aaj kal to, you know, पहले तो होता था कि लेडीज संगीत होता है, अब तो संगीत जो है वो दूल्हा दुल्हन साथ में भी कई बार दे आर सेलिब्रेटिंग, बिकॉज अक्सर जो बारात और घरात है वो एक ही जगह रुकी होती है. सो दे से कि भाई इसी बहाने दोनों फैमिलीज जो हैं विल गेट टू नो ईच अदर. तो कंपटीशन होता है कि भाई लड़के की साइड वाला ज़्यादा अच्छा डांस करेगा या लड़की की साइड वाला.

Well, that was taken from the movie Ye Jawani Hai Diwani. Well, it's always fun talking to you all and playing some melodious song along the way. It's time for me to say bye-bye. But aap kahin jaiyega nahi, do stay tuned in to 104.9 FM, Fun Asia Radio, as yahan hamare shows aapko entertain karte rahenge. Coming up next is Banda Bindas, Marvin Das. मैं मिलूंगी आपको कल दोपहर 2:30 बजे. जी हाँ, कल दोपहर 2:30 से 5 होगा मेरा और आपका साथ. वेल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
3: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaizerway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachon ke liye primary care, urgent केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं.
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
6: वेट, इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं ही तो.
8: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
9: Excuse me. It's called being loyal.
8: It's called being predictable.
9: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
8: And what's so special at Neon Cactus?
9: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
8: Not bad.
9: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
8: Okay, this I didn't expect from you.
9: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
10: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
11: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
12: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
13: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
3: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.

मेरा एक दोस्त ना अपने बॉस से बड़ा परेशान था, वो बहुत तंग करता था मेरे दोस्त को। अगर आपका भी बॉस तंग करता ना, ध्यान से सुनना। तो मेरे दोस्त ने क्या किया कि यूजुअली उसका बॉस जो है ना ऑफिस में टिफ़न लेके आता है डब्बा, ठीक है। तो उसने क्या किया, अभी परसों शाम को उसने देखा कि बॉस ने खाना खा लिया, डब्बा खा लिया। उसने चुपके से ना डब्बे के अंदर 2 कैडबरी चॉकलेट रख दिए और एक पर्ची डाल दी, उसमें लिखा था, जानू दोनों तुम ही खाना, उस चुड़ैल को मत देना। रात से ही उसका मोबाइल तब से ऑफ है और ऑफिस नहीं आया बॉस।

बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का ना सोल्यूशन बड़ा मीठा सा होता है, दो चॉकलेट डाल दो डब्बे में टिफिन वाले बॉस के चुपचाप, और जब वो घर जाएगा खुलेगा उसमें चॉकलेट होंगी, साथ में एक प्यार भरा मैसेज कि अकेले खाना उस चुड़ैल को मत देना, बस। बंदा ये बिंदास है, नाम अरविंदास है, 5:26 इन द स्टूडियो क्लॉक, वेंसडे की शाम है जी और जून की हो गई है 17 तारीख, वी आर इन द मिडल ऑफ द वीक, बस दो ही दिन, थोड़ा सा सब्र और वीकेंड आ ही रहा है, चिंता मत करो। मेरे लिए तो खैर जल्दी आता है वीकेंड, क्योंकि थर्सडे तक ही होता है जी अपना शो, मंडे टू थर्सडे 5 to 7 PM ये शो चलता है जी आपके साथ साथ। कोई अचीवमेंट आपने की हो, बच्चों ने की हो, समबडी गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट टुडे तो मुझे जरूर बताइएगा। मैंने ना गाड़ी डिटेल करवाई आज, तो मुझे दो चार लोगों ने बोला मारून भाई गाड़ी नहीं ली है, मैंने कहा नहीं भाई बस यही है ना, जैसे बॉलीवुड पुरानी चीज को पैक करके भेज देता है वैसे मैंने ये गाड़ी डिटेल करवाई है, एंड दिस स्मॉल थिंग्स यार, मतलब डिटेल कराई किसी ने नोटिस किया, पैसे वर्थ हो जाते हैं ना। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे छोटे मोटे कॉम्प्लीमेंट कोई देता है दैट पुट्स अ स्माइल ऑन योर फेस, डू लेट मी नो। जैसे कि मैं ऑल द लेडीज को कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ जो भी अभी गाड़ी में है, घर पे है, चाहे मुझे सुन रही है चाहे नहीं सुन रही है, लेडीज यू आर सुपर जीनियस। पहली बात तो ये कि जो आप लोग कर सकती हैं वो हम कभी भी नहीं कर सकते, द अमाउंट ऑफ पेशेंस यू कैरी वो भी नहीं कर सकते, यू नो इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी डिफिकल्टीज इन योर बॉडी, बायोलॉजिकल चेंजेस एंड हार्मोनल चेंजेस एंड ऑल दैट, उसके साथ इतना प्रेशर शॉपिंग का, क्या पहनना उसका, लिपस्टिक कौन सी है, घर का कलर कौन सा होना चाहिए, ये तो मतलब आपकी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर हम फैमिली दे देते हैं आपको, फिर बच्चे दे देते हैं, फिर रिश्तेदार। लेडीज़ आई एम सॉरी, इतना नन्नी सी जान और इतना सारा काम आप लोगों को ना, कभी कभी तो बाय गॉड मेरे आंसू निकल आते हैं लेडीज, बट कोई बात नहीं, अच्छा काम करती हैं आप, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जो भी अभी जोक्स आने वाले हैं उसके लिए पहले से मैंने कहा थोड़ा मक्खन लगा लिया जाए। खैर आई एम गोना बी विद यू टिल 7 o'clock, कुछ प्यारे प्यारे गाने लाइंड अप हैं जी, उनमें से पहला ये वाला विच इज़ द न्यू वर्जन ऑफ द बंधु, एंड बंधु वो नहीं, ये बंधु है कॉकटेल 2 वाला बंधु, और उसका रीमेक आया है जी, From the earlier तुम ही हो बंधु सखा, now the new one, same चीज packaging different, check करो। This new song is brought to you by none other than our drive time sponsor, attorney Omar Khwaja. कभी भी accident हो, वैसे तो उम्मीद करता हूँ कभी भी ये problem ना आए, but if you are involved in a truck accident, car accident, slip and fall, remember the website attorneyomar.com and keep him handy, trust me bahut kaam aayenge।

I think it has a different vibe to it. This is Bandhu 2.0, taken from the movie Cocktail 2. You're listening to your evening drive time show, and somebody just called me, a lady, and she said, you know what, aapne women ko appreciate kiya. Thank you very much. You made my day. And that's my goal, yaar. Aap sabka din banana chahta hoon. And especially to the ladies. You know, I always say ke we are men. We are very different than you guys. And I totally accept it. Kai log kehte hain, nahi, ji, aisa nahi hai, ji, main sab kuch karta hai, hata. कुछ नहीं कर सकते तुम जो वुमन कर सकती है सो आई रियली रियली थिंक दैट वी आर अ लिटिल स्टेप डाउन चाहे दुनिया इक्वालिटी की बात करे ये करे वो करे मेरे लिए तो भाई आई थिंक वुमेन आर अ स्टेप अहेड ऑफ अस विद एवरीथिंग दैट दे डू एंड व्हाट दे हैव टू गो थ्रू एक बार फिर से लेडीज शीशा देख लीजिए है जी गाड़ी में बैठे हो लाइट पर खड़े हो दो मिनट के लिए शीशा देखो अभी भी देखो सुबह की इतनी थकान इतने लोगों के ताने हॉर्न पी पी टी टी बच्चे की री री री री उसके बाद भी आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं यार जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट अगला सवाल जो मैं करने लगा हूँ जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाला सवाल है आप लोगों के लिए और सवाल ये है मेरा आपसे जनाब कि ये जो पेन होता है ना पेन उसको हम हिंदी में कलम कहते हैं कलम की अहमियत तलवार से ज़्यादा बहुत लोगों ने कहा है होती है कि कलम इज़ मोर पावरफुल देन अ स्वॉर्ड है जी अब आप मुझे ये बताएं अपने अकॉर्डिंगली कि कलम जो है वो पेन से ज़्यादा मतलब पेन जो है वो तलवार से ज़्यादा अहमियत कैसे रख सकता है तलवार तो इतनी स्ट्रांग होती है अच्छा जो देगा मुझे सबसे अच्छा क्रिएटिव जवाब हाँ जी उसको मिलेगा पंच तारा की तरफ से एक छोले भटूरे या फिर उनका आलू नान बड़ा ज़बरदस्त बनाते हैं नहीं खाया तो खाइएगा एलन में लोकेटेड है गिव अवे जो जीतेगा उसने पहले गिव अवे नहीं जीता होना चाहिए एटलीस्ट फॉर वन मंथ दूसरा वो एलन जाके इसको एंजॉय कर सके तीसरा आपको फन एजिया और अपना पंजाब HD3 को फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे मतलब दैट्स ऑल और उसके बाद आपका काम हो गया सिर्फ सवाल का जवाब आपने मुझे देना है सवाल क्या है कि कलम की अहमियत तलवार से ज़्यादा होती है ये कहते हैं दैट अ पेन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और मोर स्ट्रॉन्गर देन अ स्वॉर्ड Why do they say that? Can you give me a creative answer? 972-235-5555 number to the studio.

0: क्यूटी बाय बाय बाय, लेट्स सी हु डू वी हैव राइट हियर ऑन फनेजिया विद अस। करते हैं जी कॉलर्स को वेलकम। गुड इवनिंग फन, हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू?
1: I'm good. I really, really enjoy your program.
0: Thank you.
1: And मैं रोज सुनती हूँ. But my answer to your question is,
0: पहले अपना नाम बताइए.
1: देखिए सलवार है ना,
0: पहले नाम बताइए पहले अपना.
1: मेरा नाम है मोना.
0: मोना
1: कुमार.
0: मोना जी जो बोलिए.
1: मेरा जवाब आपके क्वेश्चन का ये है कि जो तलवार होती है ना, उसकी नोक, उसकी धार, उसकी जो वो आपके वो जख्म देती है, वो आपके सीने के आर पार जा सकती है, वो आपको हर्ट करती है, जख्म देती है।
0: अब पेन का
1: और पेन की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि लिखे हुए अच्छे शब्द
0: जो शायरी है वो उस पे मलहम का, वो उस पे मलहम का काम करती है।
1: यस,
0: वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है मोना जी।
1: और अभी मैंने ताजी ताजी कल पिक्चर देखी है, मैं वापस आऊंगा।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। आपके आपके आपके घर में कोई शायरी भी करता था क्या?
1: मैं करती हूँ।
0: बहुत बढ़िया, चलो शायरी की बात फिर कभी सुनूंगा। बहुत अच्छा आंसर लगा मुझे आपका, बट मैं थोड़ा सा और जरा अपने टाइप का भी ढूंढ रहा हूँ। बट खैर, आप बने रहे मेरे साथ, डोंट चेंज द डायल, और आगे बात करते हैं हम। और कौन है हमारे साथ? गुड इवनिंग फनेजिया, हु इज दिस?
2: हाय मार्विन।
0: हाय, हु इज दिस?
2: दिस इज फॉर टुडे।
0: ओके, फॉर टुडे
2: हु आर? दिस वुड बी लीना।
0: अच्छा लीना, ओके। टुडे, हाय टुडे लीना, बताइए पेन की अहमियत तलवार से ज्यादा क्यों?
2: वो इसलिए कि अगर तलवार के साथ किसी के सामने जाओ ना, तो तुम्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, राइट? सामने वाला थोड़ा
0: डर जाता है,
2: यू नो, ही विल फाइट विथ यू, ही विल गेट अनदर तलवार एंड ऑल दैट। अगर पेन हो ना, तो उसको बस कुछ पानी में कुछ मिला के सुला दो और उसकी कैरोटिड आर्टरी में पेन घुसा दो।
0: ओ तेरा भला हो गया। ये तो लीना जी क्या हॉस्पिटल में काम करती हैं आप? क्या चक्कर है? इतना जल्लादी, इतना
2: आंसर निकला ना,
0: इतना जल्लादी थॉट। मतलब हाँ, मेरे आंसर क्रिएटिव होते हैं, पर आप तो रहमान डकैत तक पहुंच गए। मतलब ऐसी खौफनुमा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट विद अस। गुड इवनिंग फनेजिया, हू इज दिस?
3: दिस जमाली।
0: जमाली साहब कैसे हैं?
3: अल्लाह शुक्र, आप खैरियत हैं?
0: अल्लाह मेहरबान। खुली हमारी दुकान 7 बजे तक है जी प्रोग्राम।
3: सर आपका प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त होता है, इस टाइम में ऑफिस से आते जरूर सुनता
0: हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये बताइए कि कलम की अहमियत तलवार से ज्यादा क्यों?
3: देखिए, तलवार का जो घाव होता है ना, वो एक बार आपको या तो उड़ा देगा या आपको जख्मी कर देगा।
0: बिल्कुल ठीक
3: है ना। कलम जो है ना, लेट से आप अगर जज होता है, जज अगर आपके
0: सर लिख दे, मैं बताऊं क्या होता है, कलम होता है ना, कमल कलम से हो जाती है शादी, सर्टिफिकेट करते हैं साइन, उसके बाद सॉरी
3: बर्बादी, आप जेल में चले जाते।
0: बिल्कुल ठीक बोले थे माली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। लेट्स सी हु डू वी हैव नेक्स्ट विद अस। दो और कॉलर लूंगा। गुड इवनिंग फनेजिया, हाय, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? हेलो,
4: हेलो,
0: हाय, गुड इवनिंग। देखें जी, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है ये और बड़ा बिजी शो है। मैम, हमारे से बात कर लीजिए जरा। नहीं, चलो फिर अगले डब्बे में चेक करेंगे कौन है। गुड इवनिंग फनेजिया, हू इज दिस?
5: हे मनीष जायसवाल इज हियर, हाउ आर यू डूइंग टुडे?
0: वेरी गुड मनीष, हाउ आर यू माय ब्रदर? व्हाई इज पेन मोर इम्पोर्टेंट और मोर यू नो अहमियत देन अ तलवार? व्हाट
5: अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका कभी किसी से कुछ भी कहा हो और आपको दुश्मनी लगानी है, दुश्मनी निकालनी हो, तो आप पढ़ लिख के जब नवाब बनोगे तब वो पता लोगे वो होगा। तो जो आप पढ़ लिख के कर सकते हो, ना कि आप झगड़ा करके। जैसे आपने एक राजकुमार राव की मूवी देखी होगी, वाइफ जब थोड़ा हाई पोस्ट पे DSP बन जाती है और वो क्लर्क रहता है, तो जवाब देने के लिए IAS ऑफिसर अपना बड़ा।
0: गॉट इट साहब, कलम की अहमियत वहां तक पहुंच गई है। एक और कॉलर, लास्ट मौका है आपके पास, बताइए फर्स्ट क्विकली के व्हाई इज पेन मोर इम्पोर्टेंट देन अ तलवार?
6: हाँ जी, अभी अभी कभी अगर बोर हो गए तो आप पेन के साथ खेल भी सकते हो, काम भी कर सकते हो।
0: शाबाश, वेरी गुड, ये बात भी
6: है, लेकिन वो तलवार से नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल ठीक हो गया बॉन्डे भैया, सब ठीक है?
6: Yes,
0: all right. And you know what? तलवार की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि कलम की अहमियत इसलिए भी है, कलम से हम नाड़ा डाल सकते हैं।
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
9: कौन सा?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
9: अरे सारे तो सेम है.
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला.
9: ओ हाँ, ये तो अलग है.
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है.
12: प्लान या होप?
11: मतलब?
12: मतलब है प्लान, मतलब स्ट्रेटजी. होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
11: ओके, तो मेरा वाला होप है.
12: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं.
11: क्यों?
12: Because retirement को hope पे नहीं, strategy पे plan करना पड़ता है.
10: Wealth Tactic, retirement planning with clarity and strategy. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
13: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा is now open at a new location in Allen. वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस. फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू. एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे. कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल. पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन. मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन your first visit.
14: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
10: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
15: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
16: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
15: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
17: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
18: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
20: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
21: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
20: कहाँ?
22: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
10: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, one vibe.
23: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

वेलकम बैक, वेलकम बैक टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो राइट आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और हाँ जी, कलम की जो वैल्यू है वो तलवार से ज्यादा इसलिए होती है। बहुत सारे लोगों ने बड़े अच्छे जवाब दिए। मोना जी ने जो जवाब दिया मुझे सबसे अच्छा लगा। मोना जी प्लीज गिव मी अ कॉल बैक, तो मैं आपको 5 तारा के छोले भटूरे तो खिलाऊं यार। एंड व्हाट शी सेड वाज के कलम तलवार जो है वो चोट देता है एंड घाव लगते हैं उससे, एंड यू नो दी ब्रूजेस राइट एंड कट्स एंड ऑल दैट। एंड जो कलम है वो अच्छा लिखा हो अगर किसी ने कलम से, तो चाहे वो ACHHA अच्छा लिखा हो या वो एक्चुअली में मीनिंगफुल हो, तो वो आपके जो जख्म है उस पर भ्रम का काम करता है। एब्सोल्युटली मोना जी, गिव मी अ कॉल इफ यू आर लिसनिंग। यू हैव वन योरसेल्फ 5 तारा का छोले भटूरे फ्रॉम एलन। इफ यू डोंट वांट इट स्टिल कॉल मी एंड लेट मी नो सो आई कैन गिव इट द नेक्स्ट बेस्ट आंसर। बट मेरा जो जवाब था जनाब, कलम की अहमियत तलवार से ज्यादा इसलिए है क्योंकि कलम से आप सलवार का नाड़ा डाल सकते हो भैया, अपने पजामों का नाड़ा डाल सकते हो। सोचो कि अगर कलम ना होता तो पजामा हो जाता ना। I'm going to be with you till 7 o'clock this evening, and this part of the show is brought to you by AG Fintax. If you've not done your taxes yet, agfintax.com pe jaiye ji, you'll get all the information. And let me tell you, they specialize in making sure that your tax liabilities are reduced and your tax jo aapki deni hai aapne bills, wo jo maximize kar sakte hain aapke returns ko. To aapki job hai ya aap high income individual hai, they can help you with both of them. And if you have multiple businesses, they'll also help you with tax planning. Saath saath aapko dete hain retirement planning options. If you looking to grow your retirement portfolio, they will do that as well. That is agfintax.com. Let's go to the next track here, which is a birthday celebration. Kyunki aaj hai Amrita Rao jo pehle nazar aayi thi with Ishq Vishk Pyar Vyar, aur uske baad bahut sari films to her name. Happy birthday to Amrita Rao. Aaj ke din janm hua ji inka bhi.

Lovely, lovely, lovely track. This is Funisha Radio 551 in the studio clock. 5:51 ho chuke hain ji, and I'm going to be with you till 7 o'clock. Har sham ko, Monday to Thursday at least, ye safar jo hai hamare saath saath hum kaatte hain ji. Pyara sa hai ye, wo wala safar nahi hai jo hame matlab karna padta hai, samajh rahe ho na. Par acha ye hota hai ki jab shaadi hoti hai aur jab tak bande ke paas bullet motorcycle hota na, tab tak biwi ke saath safar bada acha karta hai. बीवी पीछे बैठी होती है, बुलेट चल रहा होता है, डक डक डक डक डक डक, आधी बात बंदे को समझ आती है, आधी नहीं आती है, और सुकून से वो सफ़र कट जाता है. जब से गाड़ियाँ, हमारे पास पैसा ज़्यादा आ गया, तब से प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू होगी. खैर, आपको बता दूँ, दिस पार्ट ऑफ द शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय विशालन शेखर कॉन्सर्ट दैट इज़ कमिंग अप फॉर यू. कब? जुलाई 12th को है जी. दिस इज़ एट द कर्टिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड, एंड आई डोंट थिंक यू वॉन्ट मिस दिस कॉन्सर्ट, क्योंकि विशालन शेखर दोनों बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एंड दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन बैंड दिस टाइम. तो इस टाइम पूरा बैंड शैंड लेके आ रहे हैं जी, एंड दे आर गोना परफॉर्म लाइव फॉर यू. जो ये एक्सपीरियंस होता है ना, ये टोटली डिफरेंट होता है. टिकट्स कहाँ से मिलेंगी? कैश पटेल प्रोडक्शंस डॉट कॉम, दैट्स KASH पटेल प्रोडक्शंस डॉट कॉम. And I am telling you, this is one that you do not want to miss for sure. Chalein ji, do gaane aur, uske baad lenge chota sa commercial break. And break ke us paar, we're going to be celebrating something special. Aur wo kya hai? Batate hain, break to aane do. Pehle do gaane hain ji. Ek ye wala jo main lagane laga hoon. Kyunki this, ye jo 5 se 7 ki hai na ji system, ye masti ka time hai. Aur hamari jo paathshala hai, hai bilkul bilkul full on masti ki paathshala bro.

अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, इस मस्ती की पाठशाला में मास्टर जी के पास एक और सवाल है आपके लिए। वो सवाल ये है कि मैंगो, मैंगो है ना, मैंगो, इसको हमने वैसे देखो कितना हिंदी में कितना बेकार सा नाम दे दिया आम, जबकि सबसे खास है। ठीक है, अब ये मैंगो जो है, आपको क्या लगता है कि मैंगो का नाम अंग्रेजों ने मैंगो कैसे रखा? कैन यू टेल मी? 9722355555 नंबर है मेरे स्टूडियो का, मतलब पाठशाला का, और आप कॉल करके मुझे बता सकते हैं कि ये गुरु ने आम का नाम मैंगो कैसे कर दिया, बताइए। द नेशन वॉन्ट्स टू नो, द होल कंट्री वॉन्ट्स टू नो, बताइए आप मुझे कि आम का नाम मैंगो कैसे, वाई?

0: अच्छा जी, नचांगे असीं भी, पहला गल कर लिए, कौन है हमारे साथ, इनसे करते हैं बात जी। गुड इवनिंग फनी जिया, हु इज दिस?
1: दिस इज प्रदीप सर।
0: हाय प्रदीप जी, हाउ आर यू?
1: आई एम ऑल राइट सर, हाउ यू डूइंग?
0: मैं तो ठीक हूँ सर, बस बचपन में गिर गया था, बाकी चोटें ठीक हो गई हैं, सिर की थोड़ी सी रहती हैं, वो शायद ना ही हो ठीक।
1: दिल ठीक, दिल अपना ठीक रखो ना
0: सर,
1: दिल अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाता है।
0: दिल ठीक है सर, पर जो चोटें हैं ना वो दिमाग में अंदरूनी लगी हुई हैं, वो बचपन से ही हैं, तो कुछ डिफेक्ट है पीस में, वो ऐसे ही चलेगा। खैर, आप मुझे ये बताइए कि जनाब, ये गोरो ने आम कैसे रख दिया नाम? व्हाट इज दिस गोइंग ऑन?
1: नाम गोरो ने इसलिए रख दिया इसका, मैंगो, मैन गो।
0: किथे गो?
1: हाँ मैन गो, आपको पता है ना मैन गो, मैन गो का मतलब है कि आदमी इसको खा के चढ़ जाए।
0: अच्छा जी, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैन जो है इंडिया के ज्यादातर बाहर जाना चाहते थे, फॉरेन कंट्री, तो उन्हें शायद ऐसा देख लिया, बट नहीं नहीं ये बात नहीं है सर। आप कौन है? गुड इवनिंग फनेजा।
2: हेलो,
0: हाय, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग, दिस इज सौम्या।
0: आई सौम्या, हाउ आर यू?
2: गुड गुड। आई थिंक दे पुट मैंगो का मतलब मांगो, ask for it।
0: गोरे कहते, गोरे चाहते थे कि हम मांगते रहे, इसलिए उन्होंने मांगो कर दिया।
2: मांगते रहो मांगते रहो।
0: दीदी पता है क्या है, एक्चुअली क्या हुआ था कि गोरे आए थे इंडिया, ठीक है, और जब गोरे इंडिया आए थे तो पेड़ों पे आम लगे हुए थे गर्मियों में, और गोरों ने देखा कि जब भी आम गिरता था एक आदमी भाग के उसको उठा लेता था, तो उन्होंने कहा मैंगो फॉल मैन गो, बस इसलिए उसका नाम मैंगो कर दिया। ज्ञान बहुत है मेरे पास सौम्या जी, पर घमंड नहीं कभी मैंने किया। शो के बाद ब्रेक लेने लगा हूँ जी, आप कहीं मत जाइए, आई विल बी राइट बैक, एंड नाउ यू कैन टेल द गुरु मैन गो इसलिए। ओके,
3: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया Films and Fun Pizza Kitchen. Official tax and finance partner, AG FinTax. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja. In association with Passion Health Primary Care.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
8: Heere moti, main na chahu.
9: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
10: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
11: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
12: Calculating route, rerouting.
11: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
12: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
11: क्यों?
12: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं, डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
11: अच्छा तो सीधा वही ले चलो,
13: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
12: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
13: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
14: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
15: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
16: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
10: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
17: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
18: इट्स लॉसन.
17: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
18: इट्स लॉसन.
17: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
19: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल.
20: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
21: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
20: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.

Absolutely, Bindaz Bolo Ji. Naam Arvindaz Bolo. Welcome back to your evening drive time show. It's 6:07 in the studio clock. 6:07 ho chuke hain ji. Aur ye jo safar hai, ek ghanta aur hai mere paas aapke saath. All the way till 7 o'clock. Wednesday ki shaam hai. And Wednesday is the mid of the week. Aur kehte hain ji, budhwar kaam shudh. Budh karo kaam shudh. To agar kuch karna chahte ho aaj naya, agar aaj ek kaam bataun aapko waise, all the men out there. I'm sure आप में से कई करते होंगे, बट हम लोग ना, कई लोग हम में से, एंड मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं निकाल डाल रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि मैंने एक हैबिट बना ली है कि मैं अपने घर में ना, चाहे एक छोटा सा फ्लावर बुके लेके जाऊँ, बट मैं एक बुके लेके जाता हूँ, और जब वो ख़त्म होने वाला होता है, उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली होती है, आई मेक श्योर टू बाय अनदर वन, और मैं उसको रिप्लेस करता हूँ. ये मैं पहले नहीं करता था. दिस इज़ बीन अ ईयर और सो दैट आई हैव बीन डूइंग इट. एंड ट्रस्ट मी, जब भी मैं फूल लेके जाता हूँ घर पे, बीवी के मुंह पे एक स्माइल तो आनी है. सो इट्स डजंट टेक अ लॉट टू सरप्राइज, एड सरप्राइज एलिमेंट्स टू योर फैमिली एंड टू योर लाइफ. एंड आई थिंक फ्लावर्स घर में अच्छे दिखें, इट ऑलवेज प्लीजिंग टू द आई. तो जितने पैसे हम लॉटरी में और अपनी स्टारबक्स कॉफ़ी पे खर्चते हैं, यार अगर बीवी मुस्कुराती है, ले जाओ ना वो फूल सम टाइम. तो अगर आपके पास टाइम है, आज रुको, HEB पे सबसे अच्छे फ्लावर्स मिलते हैं, बाय द वे, जस्ट सो यू नो. तो जाइए HEB, गेट दैट फ्लावर एंड जस्ट सरप्राइज हर, और इसको हैबिट बना लीजिए. ट्रस्ट मी, आपको भी बहुत मज़ा आएगा. अच्छा जी, लोग कहते हैं कि लेडीज़ बहुत बोलती हैं, है जी. नहीं यार, ये गलत है. लोगों ने तो ये भी कहा है कि जो खामोशी है, है जी, वो औरत का गहना है. क्वाइटनेस इज़ द जूल ऑफ अ वुमन, है जी. अब आप जो ये बातें कहते रहते हैं, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है. ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि जो खामोशी है वो औरत का गहना है. बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो उस गहने को रात को पहनना पसंद करती है, सोने लगे.

एब्सोल्युटली अपने मन को कहो जी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. मैं तो हमेशा ही कहता हूँ यार सब ठीक है. कोई मुझसे पूछता है मार्विन हाउ आर यू, मैं कहता हूँ जी गॉड इज ग्रेट, लाइफ इज गुड, और क्या चाहिए. और वाकई गॉड इज ग्रेट मैन, मतलब हर चीज हमें जो हम मांगते रहते हैं, हमारी मांगे तो बहुत हैं. इंसान इतना लालची है कि इतना कुछ मांगता है कि हद ही हो जाए. मतलब ऊपर वाले भी कहता है बस कर पगले, रुलाएगा क्या. तो आप मांगते हो जब, लाइक योर पेरेंट्स न्यू व्हेन टू गिव यू समथिंग. ठीक है, घड़ी चाहिए आपने मांगा, आपने फोन मांगा, बट दे न्यू व्हाट टाइम टू गिव यू दैट. उसी तरह उस ऊपर वाले को भी पता है कि आपको कब क्या देना है. सो इफ सर्टन थिंग्स आर डिलेड, बिलीव मी दे आर नॉट डिनायल्स. कहते हैं ना डिलेज आर नॉट डिनायल्स, सो बिलीव इन दैट. और अगर आपके सामने कोई बातें करते करते बोलता रहे ना, आप बात कर रहे हो और वो बोल रहा है बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपकी बकवास का मेरे पास टाइम नहीं है.

0: एंड राइट आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक फिर से आ रहा हूं, डोंट गो एनीवेयर.
1: शुभ दिन आ पहुंचा है, एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में. PMJ Jewels.
2: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
3: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
4: Papa, Father's Day pe kya gift chahiye?
5: Beta hai tu mera. Tum log saath baith jao, yahi kaafi hai.
6: Aur wahi to sabse bada gift hai. All that your father needs is good food, great company and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
3: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
7: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
7: That magic removal ho, love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
8: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
7: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
8: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
10: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
11: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
10: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
12: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
13: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
14: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
3: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
15: सच में? सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

पत्नी ने अपने पति से बड़े रोमांटिक होके बड़ी अपनी पुरानी यादें याद करती हुई पूछती हैं कि सुनो जी, आपको याद है जब आप मुझे देखने आए थे तो मैंने किस रंग की साड़ी पहनी थी? अच्छा, ये सवाल ना ज़्यादातर लड़कियां एक बार ही तो पूछती हैं अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड से, आप मुझे पहली बार मिले थे क्या पहना था? तो मेरे जैसे पति ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने नहीं देखी थी। पत्नी कहती है, इसका मतलब आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। पति कहता है, देखो यार, ऐसी बात नहीं है, जब कोई पटरी पे लेटने जाता है तो वो ये थोड़ी देखता है ट्रेन कौन सी आ रही है, शताब्दी या राजधानी।

Music has no boundaries, and I believe that totally. You know, especially jab maine ye gana suna from Khan Saab. Khan Saab is, of course, big fan of Nusrat Saab. He considers them his heavenly guru and everything like that. But I think Khan Saab ka ek gana aaya tha, Rim Jim Rim Jim. And that is a beautiful, beautiful Punjabi number. And I want to play that for you because ye gana aaya tha, I would say, sometime 15 saal se 20 saal to ho gaye hain. And I want you guys to know कि अगर खान साहब को 20 साल लग सकते हैं टू बिकम अ वर्ल्ड वाइड नेम और टू बी अ नेम दैट यू नो इज इन एवरी हाउस होल्ड बिकॉज ऑफ द सॉन्ग दैट ही जस्ट डिड, आई वांट यू टू नो कि कभी भी आप भी जो कर रहे हैं ना उसको करने में अगर टाइम लग रहा है दैट मींस यू आर इन द राइट ट्रैक. डू नॉट गिव अप बिकॉज जो सक्सेस है उसकी जो पौड़ियाँ हैं वो थोड़ी लंबी हैं और उसका कोई एस्केलेटर कोई एलिवेटर कोई स्पीड जुगाड़ नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप ही आप चढ़ते हैं. सो इफ़ खान साहब कैन वेट 20 इयर्स टू गेट टू दिस सक्सेस, 2016 में ये गाना आया था, 10 साल हो गए इस गाने को आए, स्टिल अ लॉन्ग टाइम. बट आप लोगों में से कई लोगों ने ये गाना सुना ही नहीं होगा. बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग, व्हेन इट कम्स टू सुर, जो इस गाने में उन्होंने काम किया है, जो मैं लगाने लगा हूँ, इज एक्सेप्शनल. And even having that talent 10 years ago was a little, हाँ ठीक है, एक सिंगर है, लड़का है, गाता है. Took him 10 years down the line, this song, दिल पे जख्म खाते हैं, that became the one that would take him to the global stage. So sometimes your efforts are not seen by the world, and they should not be. It's your effort, it's your story, it's your success. Patiently काम करते रहें, जो कामयाबी है, जरूर आएगी. और कामयाबी कदम चूमने आती है, सॉक्स चेंज कर लेना, नए वाले पहनना, कहीं बू से भाग ना जाए.

0: Beautiful voice of Khan Saab with that track, Rim Jim. I'm going to take a short commercial break. Last segment of my show is coming up. Yaar, aap baar baar ye kyun kehte rehte hain kai log, English hard hai, English hard hai. Hard nahi English. Thoda pani aur ice dalna padta hai.
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance. I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty. I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
4: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
5: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
6: Mamu, देखो क्या हो गया?
7: ओ क्या हो गया?
6: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
7: ओए जर्मन का कमाल है।
6: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
7: ओए नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
8: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
9: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
10: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
11: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
12: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स ऑफ आवर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
11: इमिग्रेशन इज अ सीरियस कंसर्न फॉर आवर कम्युनिटी एंड व्हेन यू आर फाइलिंग योर केस, यू वांट अ फर्म व्हिच इज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू इमिग्रेशन लॉ, लाइक द लॉ ऑफिसेज ऑफ सीमा मेहता। From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
17: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
18: लिया।
17: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
18: नहीं आया।
17: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.senadainc.com today.
18: is Ali Zafar, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

देखो शादीशुदा आदमी अगर अपनी बीवी से ये सब सुन लेना तो बस मजा ही आ जाता है। बाय गॉड, आप भी लेडीज बोल दिया करो उनको कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमें तो लगता है कि बस हो गई शादी, अब आपने हमें ऐसे ही रखा हुआ है साइड पे, राशन ले आ, खाना ले आ, कहीं घुमाने ले जा। कभी कभी बोल भी दिया करो आप लेडीज भी, हाँ। देखो मेरे ना फेसबुक पे जाओ, पोस्ट देखो कल बीवी ने डाली है। मेरा पता है फेसबुक क्या है, बंदा बिंदास मार बिंदास, इंस्टाग्राम फेसबुक जाके पोस्ट देखो, क्या बात है। मतलब ऐसे होती है अप्रिसिएशन। कोई बात नहीं, आप लोग भी करते होगे आपस में, मेरा तो काम है आपको थोड़ा सा करवाना। आपको पता है कि जो कभी आपने वेल्डिंग होती देखी है, वेल्डिंग, तो वेल्डिंग में क्या होता है कि वेल्डिंग में दो लोहे लिए जाते हैं और उनको एक औजार के साथ जोड़ा जाता है। जब वो जोड़ रहे होते हैं ना तो उसमें तर तर तर तर चिंगारियाँ वगैरह निकलती हैं और फिर वो जोड़ा बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद कुछ नहीं, चिंगारियाँ खत्म। शादी में क्या होता है कि शादी में जोड़ा पहले बनता है और फिर जो चिंगारी है वो सारी उम्र तिर तिर तिर तिर तिर तिर तिर तिर तिर करती रहती है। देखो कहते हैं जब कोई ज्ञान हो तो शेयर करना चाहिए। आई डिड माई पार्ट।

देखो जी, वीकेंड आने वाला है, वीकेंड आने वाला है भाभी। एक प्लान बताऊं बढ़िया सा, ऑल द भाभीज लिसनिंग, एक प्लान बता रहा हूं आपको बहुत बढ़िया। क्या करना है कि पीएमजे ज्वेलर खुल रहा है इस वीकेंड पे, 20th of June, और ये पीएमजे जो है ना, इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड है। दे आर कमिंग टू फ्रिस्को, ब्रिंगिंग ओवर 60 years ऑफ ज्वेलरी एक्सेलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप। ठीक है जी, स्टनिंग गोल्ड डायमंड ब्राइडल कलेक्शंस फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन। जॉइन द ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन 20th of June, मतलब इस 20th को आपको वहां जाना है। एक्सक्लूसिव ऑफर्स होंगे जो सिर्फ उस दिन अवेलेबल होंगे। एक्साइटिंग फेस्टिविटीज हैं एंड चांसेस टू विन सम ब्यूटीफुल ज्वेलरी पीसेस। एंड आई एम टेलिंग यू, पीएमजे इज नॉट अ स्मॉल ब्रांड, तो बहुत अच्छे गिफ्ट्स आप जीत सकती हैं। प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा गतमनेनी, PMJ इज अ नेम ट्रस्टेड बाय जनरेशंस। विजिट PM Jewelers इन फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट एंड डिस्कवर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी। और याद रखिएगा, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है, दे कैन रीच द स्टोर ऑन द 20th फॉर ग्रैंड ओपनिंग। दिस इज 20th of June, 11 बजे से 2 बजे तक। लेडीज, आपने क्या करना है मैं बता रहा हूँ आपको। आपने अपने हस्बैंड को बोलना है, यार तुम वो फ्रिस्को में अपने फ्रेंड से मिलना चाहते थे ना काफ़ी दिनों से, और आप बड़े दिनों से अपने दोस्तों से हैंग आउट नहीं किया, तो वाई डोंट यू मेक दैट बॉयज़ प्लान, और आप इनको छोड़ दो एक बार पे, या ये आपको छोड़ दें ज्वेलरी स्टोर पे और खुद चले जाएं अपने दोस्तों के साथ बार पे, 3 घंटे ये मज़े करें। क्रेडिट कार्ड आपने इनका लेके जेब में रख लेना, वो वाला जो पेड ऑफ है, हाँ वो जेब में रख लेना आपने, और वो जेब में रख के आपने चले जाना पीएमजे। तो आपने आराम से 2-3 घंटे देखनी है, नई चीज़ें आई हैं, टाइम लगता है। यू इन्जॉय योर टाइम, लेट हिम इन्जॉय हिज टाइम। और जब आप, एक और अच्छी बात बताऊँ, खास बात, आपने उस दिन अगर शॉपिंग कर भी ली और अगर इन्होंने अपने दोस्तों के साथ टाइम बिता लिया उस दिन, तो जब आप दोनों मिलोगे तो ये भी खुश होगा, आप शॉपिंग करके बिल भी दे दोगे तब भी कुछ नहीं बोलेगा, गारंटी मेरी है। ट्राई करके देख लेना, PMJ ज्वेलर्स ओपनिंग दिस वीकेंड 20th of June, 11 to 2 PM। अब आपको पता ही है ना क्यों नहीं बोलेगा वो कुछ, हाँ क्योंकि दोस्तों के साथ थोड़ा एक दो है ना, उसके बाद तो बंदा अच्छे मूड में ही होता है, कोई गाल नहीं तू एक होर ले लंदी, यही कहेगा। एक गाना और उसके बाद ले रहा हूँ जी आपसे इजाजत। दिस इज द न्यूअर वर्जन ऑफ द चुनरी चुनरी। एंड याद रखिएगा कि हमारे पास एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, विच इज द वर्ल्ड म्यूजिक डे कॉन्टेस्ट एट funasia.net। उस वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा जी ऑप्शन टू फिल इन योर फेवरेट सॉन्ग्स इन आर फॉर्म दैट इज लिस्टेड देयर फॉर यू। उसमें क्या होगा कि आप जब अपने गाने अपनी पसंद के डालेंगे डिफरेंट जॉनर्स के, अगर वो प्लेलिस्ट आपकी सेलेक्ट हो गई और 21st of June को यहां प्ले की गई, तो आपको मिलेगा एक मजेदार सरप्राइज फ्रॉम funasia।

All right, with that, it is a wrap from my side. Yani ki Banda Bindaz, Marv Bindaz is signing off. Upar wala India ji, kal ka din, to yahi milunga aapko shaam ko 5 to 7 on your favorite station, jiska naam hai Fun Asia Radio, with your favorite evening drive time show, man. Yani ki the Bindaz show. To bhaiya, 5 se 7, gaadi mein aapko pata hai ki agar aap hain, ghar pe hain, jahan bhi hain, achhi company hai, to 104.9 to aapko rakhna hi hai. Mere baad aayengi Ippi the Hippie. वो भी एक जबरदस्त अलग स्वैग लेके आई है एंड इफ यू हर्ड हर देन यू नो व्हाट शी ब्रिंग्स इफ यू हैवंट देन स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ शी डज ब्रिंग अ न्यू फ्लेवर टू 104.9 एफएम जाते जाते हमेशा कहता हूँ और ये बात तब तक कहता रहूंगा जब तक हर बंदा अपना ख्याल पूरा नहीं रखना शुरू करेगा द मैन और द वुमन इन द मिरर जब भी आप सोने जाते हैं सुबह उठते हैं वेन यू सी योर सेल्फ इन द मिरर दैट पर्सन दैट यू सी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इसके इम्पॉर्टेंट बॉस नहीं है इसके इम्पॉर्टेंट डेडलाइन नहीं है इसकी इम्पॉर्टेंट बच्चे नहीं है इससे इम्पॉर्टेंट बीवी नहीं है कुछ भी इससे इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इफ दिस पर्सन दैट यू सी इन द मिरर इज हेल्दी इज मेंटली सेन इज हैप्पी ओनली देन दैट हैप्पीनेस कैन गो आउट टू अदर्स अगर आपका कभी दिल करता है कोई छुट्टी पे जाने का स्टॉप एवरीथिंग टेक दैट टाइम एंड गो जिंदगी काम कभी नहीं रुकते भैया और कभी किसी के जाने से कुछ रुकता भी नहीं है द ओनली थिंग दैट वी डू इज बर्न आर सेल्व्स आउट मैं रिटायर होऊंगा तो ये करूंगा रिटायर होऊंगा तो वो करूंगा रिटायर हुए तो भैया गोडों में दर्द शुरू हो गया रिटायर हुए तो सांस फूलने लग पड़ी तो जो जिंदगी में करना है वो अभी करो बाद की तो बाद में देखेंगे रही तो रही नहीं रही और जितनी रही मजे से रही वो ही बात मैटर करती है भैया विद दैट इट इज गुड नाइट एडियोस एंड I will see you tomorrow. Ta-da.